अभी ब्रांड मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। सुबह के 6:55 होने को है। अब क्रमशः पहले संस्कृत में और फिर हिंदी में समाचार हम आकाशवाणी दिल्ली से

श्रोताओं, जीवन की दौड़ में हर कोई किसी न किसी मंजिल की ओर बढ़ रहा है। कोई अपने सपनों को साकार करने के लिए संघर्ष कर रहा है तो कोई अपनी सीमाओं को पार करने का साहस जुटा रहा है। ऐसे ही जज्बे, अनुशासन और निरंतर प्रयास का संदेश लेकर हर साल 23 जून यानी आज के दिन मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस। आज ही के दिन यानी 23 जून सन 1894 को आधुनिक ओलंपिक खेलों की नींव रखी गई थी। एक महान शिक्षाविद और खेल प्रेमी ने एक ऐसे वैश्विक खेल आंदोलन की कल्पना की थी जो देशों के बीच केवल प्रतिस्पर्धा ही नहीं बल्कि मित्रता, सम्मान और शांति का संदेश भी फैलाए। इसी स्मृति में दुनिया भर में ओलंपिक दिवस मनाया जाता है। इस खास दिन पर विश्व के अलग अलग हिस्सों में कई तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं जिसमें हर वर्ग के लोग या खिलाड़ी शामिल होते हैं। श्रोताओं, आज के दौर में जब बच्चे और युवा डिजिटल दुनिया में अधिक समय बिताने लगे हैं, तो ओलंपिक दिवस हमें याद दिलाता है कि खेल केवल मनोरंजन नहीं बल्कि व्यक्तित्व निर्माण का एक सशक्त माध्यम है। चाहे बड़े खिलाड़ी बने या नहीं, पर खेलों से जुड़कर हम जीवन के अनमोल पाठ अवश्य सीख सकते हैं। तो आइए इस ओलंपिक दिवस पर हम भी संकल्प लें कि अपने जीवन में किसी न किसी खेल को स्थान देंगे, स्वस्थ रहेंगे और हर चुनौती का सामना पूरे आत्मविश्वास के साथ करेंगे, क्योंकि मंजिल उन्हीं को मिलती है जो गिरकर भी संभलना जानते हैं और हार कर भी मुस्कुराना नहीं।

0: के फिल्म का गीत आप सुन रहे हैं। नमस्कार जगदलपुर।
1: माटी की सौंधी खुशबू के साथ,
2: पवन के ठंडे झोंके के साथ,
1: हिलोरे लेगी
2: आकाश की वाणी।
1: आकाशवाणी
2: विज्ञापन के लिए संपर्क करें आकाशवाणी जगदलपुर आकर,
1: या फोन करें 222150 या 222400,
2: 222150 या 222400।
3: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सह कर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
4: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
5: देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए अपनी बात कीजिए विज्ञापन आकाशवाणी के साथ। डायल कीजिए हमारा टोल फ्री नंबर 1512।
0: नमस्कार, जगदलपुर में अब प्रस्तुत है श्रोताओं के संदेशों, समीक्षाओं और सुझावों पर केंद्रित कार्यक्रम पत्रांकन। संपादन है रानू डाक का और प्रस्तुति है चंद्र ऋषि।

0: आप सभी श्रोताओं को चंद्र ऋषि ठाकुर
1: और रानू का
0: नमस्कार। तो रानू जी, आज हम फिर हाजिर हैं पत्रांकन का एक नया अंक लेकर, और मैं बहुत उत्साहित भी हूँ क्योंकि देख पा रही हूँ कि हमारे पास बहुत सारे संदेश हैं। तो देरी ना करते हुए हम शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम, और बताएं कि आज सबसे पहला संदेश किनका है।
1: जी जरूर ऋषि जी, ये पहला पत्र मैं ले रही हूँ जो आया है अनूपपुर मध्य प्रदेश से जयमंत्री केवट का। आपने लिखा है, कार्यक्रम पत्रांकन में आप दोनों को बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन। आगे आप लिखती हैं कि पिछले अंक में हमने दो आवाजें सुनी जो बेहतरीन थी। ये आवाजें थी मनिंदर सिंह देवगुड़ की और सुखेंदु मलिक की। आप दोनों ने श्रोताओं के संदेशों के ऐसे जवाब दिए जिसे सुनकर हमें बेहद खुशी हुई। आकाशवाणी के कार्यक्रम और प्रस्तुति के लिए सभी उद्घोषकों का आभार और धन्यवाद करते हुए आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं। आगे आप लिखती हैं कि कार्यक्रम को सजाने संवारने से लेकर सफल प्रस्तुति तक आप सभी पूरे मनोयोग से कार्यक्रम लेकर आते हैं, चाहे वो सुबह नमस्कार जगदलपुर हो, एक ही कलाकार हो या फिर श्रोता सुमन, सभी कार्यक्रम में आप जान छिड़क देते हैं। आप सबको बधाई और शुभकामनाएं।
0: सबसे पहले तो आपको धन्यवाद दिल से, जयमंत्री केवट जी को जी। कि इन्होंने, हम जो कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं उसके पीछे हमारा कितना मेहनत होता है, हमारे कितने प्रयास होते हैं, उस बात को समझा। कोई भी कार्यक्रम हम आपके समक्ष जब प्रस्तुत करते हैं तो उसको रिकॉर्डिंग करने के लिए, एडिटिंग करने के लिए या फिर उसकी स्क्रिप्टिंग के लिए, स्क्रिप्ट लिखने के लिए हमें पूरे दिन दिन भर लग जाते हैं
1: जी।
0: तब जाकर हम आपके समक्ष कुछ कार्यक्रम प्रस्तुत कर पाते हैं। तो कोई भी कार्यक्रम अगर हमारे कोई भी उद्घोषक आपके सामने या कंपेयर या चाहे मैं हूँ आपके सामने अगर प्रस्तुत कर रहे हैं, तो आप ये जान लीजिए कि उसके पीछे बहुत सारे लोगों की मेहनत जुड़ी हुई है, बहुत लोगों ने उस पर समय दिया है और बहुत लोगों के प्रयासों का वो परिणाम है। तो आपने इस बात को समझा और सराहा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने इतना प्यारा संदेश भेजा है, इसके लिए भी आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। तो आगे बढ़ते हैं रानू जी, बताएं कि अगला संदेश किनका पढ़ रही हैं आप।
1: जरूर ऋषि जी, अगला संदेश है देवरी भाटापारा छत्तीसगढ़ से गन्नूलाल रजक, के आर साहू, अश्विनी वर्मा और गणेश राम मिस्त्री का। अभिवादन पश्चात आपने लिखा है कि 10 जून को विश्व नेत्रदान दिवस पर नमस्कार जगदलपुर कार्यक्रम में बेहतरीन जानकारी और गीत इन्हें अच्छे लगे। आप लिखते हैं, ये सही है कि आंख है तो जहान है, नहीं तो जीवन सुनसान है। एक छोटा सा निर्णय किसी की दुनिया रोशन कर सकता है। नेत्रदान करें, अंधकार में आशा की किरण बने। बहुत सुंदर प्रस्तुति। इसी दिन की मधुरिमा भी इन्हें पसंद आई। गुलशन में शीर्षक गीत मंदिर पर कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया जो इन्हें बहुत पसंद आया। कार्यक्रम की रोचक बेहतरीन प्रस्तुति के लिए प्रस्तुतकर्ता हरिप्रिया जी को हार्दिक बधाई। इसी दिन पत्रांकन कार्यक्रम की सुंदर प्रस्तुति के लिए चंद्र ऋषि ठाकुर जी और रूपाली पारवी जी को बधाई। इसी दिन की बात इन्होंने एक ही कलाकार कार्यक्रम के लिए लिखी है कि जाने माने मशहूर शायर और गीतकार हसरत जयपुरी पर केंद्रित जानकारी और गीत सुनने को मिले जो इन्हें बहुत अच्छे लगे। साथ ही श्रोता सुमन कार्यक्रम की प्रस्तुति को भी इन्होंने सराहा। ये कहते हैं

0: सुंदर गीतों के साथ साथ श्रोताओं के अधिक से अधिक पत्रों को शामिल करने के लिए प्रस्तुतकर्ता जूही जोशी के साथ साथ आकाशवाणी जगदलपुर केंद्र को ढेर सारी बधाई। आगे उन्होंने लिखा है कि 21 जून को प्रसारित कार्यक्रम श्रोता सुमन में काफी लोकप्रिय और मधुर गीत सुनवाने के लिए प्रस्तुतकर्ता मनिंदर सिंह देवगुरु जी को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद।
1: वैसे आप तो हमारे नियमित श्रोता है और हमें समीक्षाएं और अपने संदेश भेजते ही रहते हैं, फरमाइशों में भी आपके पत्र हम शामिल करते हैं। और चूंकि यहाँ पे इन्होंने नेत्रदान की बात की है तो नेत्रदान भी अंगदान का एक हिस्सा है। और हमारे देश की अगर बात करें तो बहुत सारी भ्रांतियां फैली हुई हैं रानू जी, जैसे अगर आप अंगदान करते हैं, अपने शरीर का कोई सा भी हिस्सा दान करते हैं तो आपका अंतिम संस्कार ढंग से नहीं होता है, या फिर जो पुनर्जन्म की हमारे यहाँ पे बात होती है कि अगले जन्म में आपके अंग छिन्न भिन्न आप पैदा होते हैं, अंगहीन दान कर दिया वो आप नहीं होता है, और ऐसी बहुत सारी जो भ्रांतियां हैं वो फैली हुई हैं। लेकिन आप ये सोचकर देखिए, जब एक व्यक्ति मरता है, एक मृत व्यक्ति भी जब अपना अंग दान करता है तो वो 8 लोगों की जान बचा सकता है
2: जी।
1: और ये मानवता के प्रति एक उपकार भी है, और आप ये पुण्य का काम ही कर रहे हैं, तो ये पाप कैसे हो सकता है अगर आप मरते हुए भी किसी दूसरे की जान बचा रहे हैं, तो ये पाप कैसे होगा और भगवान आपको इतनी बड़ी सजा कैसे देगा कि अगले जन्म में आपको अंगहीन कर दे। तो आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचे, इस तरह से भी सोचे और अंग दान करें आप, क्योंकि ये जितनी भ्रांतियां फैली है वो गलत है कि
2: मेडिकल साइंस भी
1: ये कहता है।
2: और भावनात्मक रूप से भी हम देखें ऋषि जी,
1: जी
2: तो अगर आपने किसी को नेत्रदान किया है तो मृत व्यक्ति तो चलो चला गया,
1: लेकिन उसका कोई अंग तो जिंदा है,
2: अंग उस व्यक्ति के शरीर
1: में जिंदा है,
2: तो उसके माध्यम से वो उसे देख सकते हैं, उन्हें महसूस कर सकते हैं, तो ये भावनात्मक रूप से भी बहुत अच्छी
1: जी जी। और ये बात भी गलत है कि सिर्फ मृत व्यक्ति ही अंग दान कर सकते हैं, कई ऐसे अंग भी होते हैं जिसे जिंदा व्यक्ति भी दान कर सकते हैं, जैसे एक किडनी आप दान कर सकते हैं, अपना कोई ऊतक दान कर सकते हैं, यहाँ तक कि लीवर भी।

0: भांति दोपहर को चांदी की भांति और सांध्यकालीन लेने पर तांबे की तरह ये फायदेमंद होता है। आपने ये जो उपमान दिया है वो आकाशवाणी जगदलपुर के लिए है।
1: जी जी,
0: इन्होंने ये कहा है कि ठीक इसी तरह आकाशवाणी जगदलपुर है। आगे ये लिखते हैं कि 19 जून यानी विश्व सिकल सेल दिवस पर सुखेंदु मलिक जी ने बड़ी सारगर्भी चर्चा की, अच्छी चर्चा के लिए हार्दिक बधाई। 20 जून को आशा दुल्हनी जी श्रोता सुमन की खुशबू बहाने आई, शीतल हवा में खुशबू बिखेरने के लिए धन्यवाद और बधाई। 21 जून को गुलशन में नए तराने सुने, हृदय गदगद हो गया। ये लिखते हैं, ये रेडियो कभी दिल को बच्चा, कभी युवा तो कभी सयाना बना देता है, ये राज है रेडियो का। अच्छी प्रस्तुति के लिए सागर जी को बधाई और धन्यवाद। और 21 जून की बात भी आपने लिखी है आगे कि श्रोता सुमन हमने सुना, जिसे प्रस्तुत किया मनिंदर सिंह देवगुण जी ने, आप प्यारी कलियां चुनकर लाए थे जो खिलकर सुमन बन गए, अच्छी प्रस्तुति है तो बधाई। 21 जून की ही बात आपने लिखी है कि इस दिन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस था, ये भारत की पहल से संयुक्त राष्ट्र ने घोषित किया था। योग गुफाओं में दम तोड़ रहा था जिसका प्रचार प्रसार किया जा रहा है। आप लिखते हैं कि योग और प्राणायाम स्वास्थ्य के लिए तो उत्तम है, जिन्हें जल्दी करने पर वो व्यायाम हो जाता है और इसी को धीरे करें तो वो योग हो जाता है। यदि आपको सेहत चाहिए तो योग अभ्यास सदैव और नियमित करें।
1: जी, अभी सबसे पहले तो साहू परिवार को धन्यवाद, और ये हमेशा ही हमें संदेश भेजते रहते हैं और प्यारे प्यारे संदेश ही भेजते हैं। और अभी हम कुछ देर पहले ही भ्रांति की बात कर रहे थे और एक भ्रांति इन्होंने भी अपने संदेश में लिख दी है, तो मैं उसको यहाँ पे कहना चाहूंगी। उन्होंने कहा है कि केला जो है वो पीलिया का शमन करता है, तो ऐसा कुछ वैज्ञानिक तौर पर प्रूफ नहीं है, सबूत नहीं है कि केला पीलिया को हटाता है, तो ये भी एक तरह की भ्रांति ही मानी जाएगी। लेकिन इन्होंने यहाँ पे उपमा देने के लिए लिखा था, वैसे केला का जिक्र किया था। और जी हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा है कि जिस तरह से केले के फायदे होते हैं, उसी तरह आकाशवाणी जगदलपुर के भी फायदे हैं। और कुछ फायदे मैं आपके सामने गिनाना चाहूंगी। जैसे आप जब रेडियो में सुनते हैं तो आपकी कल्पना शक्ति बढ़ती है, जो भी चीज चल रही है उसको आप सोचते हैं कि हाँ ये ऐसा हो रहा होगा, ट्रेन की आवाज चल रही है तो हाँ ट्रेन चल रहा है। आपकी इससे कम्युनिकेशन स्किल, जिसे हम बोलते हैं कि वाक पटुता, बढ़ती है। और साथ ही आप काम करते करते भी इसको बैकग्राउंड में अगर सुनते रहेंगे तो उससे भी आप बहुत सारे सूचनाएं ले पाते हैं, ज्ञान ले पाते हैं, और साथ में आपको मनोरंजन भी देता है, जो कि हमारा ध्येय भी है। तो बहुत सारे फायदे आपको रेडियो के होते हैं, केले की तरह ही।
0: और इन्होंने तो ये भी होता है कि जब हम धीरे से संगीत लगाकर अगर हम नींद लें तो बड़ी अच्छी मीठी नींद आती है।
1: हाँ, मीठी नींद भी आती है जी। और संदेश पढ़ रहे हैं हम अपने श्रोताओं के, जो संदेश उन्होंने वो भेज रहे हैं, उससे भी हमको पता चलता है कि हमारे कार्यक्रमों को सुनकर उनकी भी जो लिखने की शैली है वो भी सुधर रही है। और यहाँ पे रानू जी, इन्होंने योग दिवस की बात की, कल 21 जून था, कल हमने योग दिवस मनाया जगदलपुर में, बहुत धूमधाम से मनाया, हमने अपने आकाशवाणी जगदलपुर में भी धूमधाम से योग दिवस मनाया है। वैसे क्या आपको पता है रानू जी कि 21 जून को ही क्यों चुना गया योग दिवस मनाने के लिए? क्योंकि ये साल का सबसे बड़ा दिन होता है और अच्छा। जो योग करते हैं वो इसको बहुत शुभ मानते हैं, उन्हें इस दिन सकारात्मक ऊर्जा मिलती है, इसको सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक भी माना जाता है और इसे आध्यात्मिक तौर पे भी खास दिन माना जाता है।
0: अच्छा, ये पूरे वर्ष भर के बीच का दिन होता है शायद,
1: सबसे लंबा दिन भी होता है ये। जी, और योग करने के तो फायदे बहुत सारे हैं, और कल 21 जून था तो 21 जून को सभी को बताया भी गया होगा कि क्या क्या फायदे होते हैं, तो हमारे श्रोता भी योग करें और योग के लाभ लें, यही मैं चाहूंगी। और अब आगे बढ़ते हैं, बताएं कि अगला संदेश किनका है।
0: जी बिल्कुल, ये अगला संदेश है चांदनी चौक गंडई पंडरिया से पवन कुमार सेन, प्रभा देवी सेन, लक्की विक्की नानू, रविन्द्र रौनक सेन का। आप लिखते हैं, हमारे छत्तीसगढ़ की पावन भुइयां धन्य है, जहां की सौंधी खुशबू में हमें जन्म लेने का सौभाग्य मिला है, और इसी छत्तीसगढ़ के आकाशवाणी जगदलपुर से हमें सुंदर मनमोहक प्रस्तुतियां सुनने को मिलती हैं, जिससे आत्मा तृप्त हो जाती है। आकाशवाणी जगदलपुर के प्रसारण एक चुंबकीय शक्ति की तरह है, जो लोहे की तरह से हमें अपनी ओर आकर्षित कर लिया करते हैं। पिछले पत्रांकन कार्यक्रम जो कि 8 जून को प्रसारित हुआ था, इसने हमें अपनी ओर आकर्षित किया। कार्यक्रम प्रमुख चंद्र ऋषि ठाकुर जी और रूपाली परोई जी की सुमधुर आवाज से सजा ये कार्यक्रम था, जिसे सुनकर मन आनंदित हो गया। इसी तरह फोन इन चाहत कार्यक्रम के लिए सुखेंदु मलिक जी को आपने बधाई दी है, साथ ही प्रीति यादव जी, प्रीति गुप्ता, जसवीर कौर, आशा दुल्हनी, तरुणा मौर्य, सुशील सिंह ठाकुर, गायत्री आचार्य और मनिंदर सिंह देवगुड़ की प्रस्तुतियां इन्हें काफी अच्छी लगी, जिसके लिए इन्होंने सभी को बधाई दी है। आपने लिखा है, ऐसी सुंदर मनमोहक प्रस्तुति के लिए आकाशवाणी जगदलपुर के कार्यक्रम प्रमुख माननीय चंद्र ऋषि ठाकुर जी को बहुत धन्यवाद।

0: और आकाशवाणी जगदलपुर परिवार को शुक्रिया अदा करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद
1: जी। तो सबसे पहले सेन परिवार को समय निकालकर हमें संदेश भेजने के लिए धन्यवाद। और आपने यहाँ पे हमारे जितने भी उद्घोषकों के प्रयासों को सराहा है और जिनके भी कार्यक्रम आपको पसंद आए हैं, तो आपने जिनके लिए बधाई यहाँ पे प्रेषित की है वो बधाइयां हम उन तक पहुंचा देंगे। और आपने यहाँ पे हमारे छत्तीसगढ़ की जो पावन भूइया है उस पर जन्म लेने के लिए खुद को धन्य माना है, हम भी धन्य मानते हैं खुद को, क्योंकि छत्तीसगढ़ की तारीफ जितनी की जाए उतनी कम है। यहाँ पे लोग छत्तीसगढ़ को सिर्फ धान के कटोरा के नाम से जानते हैं पूरे भारत में, लेकिन छत्तीसगढ़ धान का कटोरा तो है ही, उसके साथ साथ अगर हम इसकी प्राकृतिक सुंदरता की बात करें, आप हम बस्तर अंचल में रहते हैं, बस्तर अंचल में ही इतने सारे पर्यटक स्थल हैं, आप ऐसे पर्यटक स्थल पूरे भारत में क्या पूरे एशिया में भी, एशिया महाद्वीप जो है वहां भी नहीं देख पाएंगे। जैसे हमारा कुटुम्बसर की जो गुफा है वो सबसे लंबी गुफा है, और
0: जलप्रपात
1: है यहाँ की,
0: वन्य संस्कृति है,
1: यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता तो है ही। यहाँ की अगर हम भाषाओं की बात करें, यहाँ की बोलियों की बात करें, चाहे यहाँ की जो आदिवासी संस्कृति है उसकी भी बात करें,
0: एक अलग ही मिठास है।
1: तो सिर्फ प्राकृतिक रूप से ही सुंदर नहीं है हमारा छत्तीसगढ़, या सिर्फ धान का कटोरा ही नहीं है, यहाँ की संस्कृति भी बहुत वृहद है, बहुत समृद्ध है। इसके साथ ही यहाँ के अगर हम ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को भी देखें, ऐतिहासिक चीजों को भी देखें, तो यहाँ पे ऐतिहासिक पर्यटक स्थल भी बहुत सारे हैं और इतिहास भी काफी समृद्ध है। तो हम खुद को भी धन्य महसूस करते हैं, हमें भी गर्व होता है कि हम छत्तीसगढ़ के हैं। अगर हम बाहर जाते हैं छत्तीसगढ़ के बाहर, तो लोग अपने स्टेट का नाम, अपने राज्य का नाम बताने में थोड़ा झिझकते हैं, उन्हें ऐसा महसूस होता है कि छत्तीसगढ़ शायद थोड़ा पिछड़ा है, लेकिन नहीं, छत्तीसगढ़ पिछड़ा बिल्कुल नहीं है। अगर आप इसके खनिज संपदा को भी देखें तो ये खनिज संपदा के मामले में बहुत समृद्ध है। यहाँ के हर जगह पे, चाहे आप महानदी बेल्ट की बात करें, उधर पूरे कोयले के खान है, कोरबा की अगर बात करें तो कोयले की खान है, हमारे बेलाडीला की बात करें तो आयरन की खान है, चूना पत्थर पूरे ये जो पठार है हमारे छत्तीसगढ़ के मध्य पठार है, वहां पूरे चूना पत्थर मिलते हैं। तो इस तरह से छत्तीसगढ़ खनिज संपदा में भी बहुत समृद्ध है, हर दृष्टि से छत्तीसगढ़ समृद्ध है। तो हम सबको गर्व होना चाहिए कि हमने छत्तीसगढ़ की इस पावन भूमि पर जन्म लिया है।
0: यहाँ की जलवायु की तो
1: हाँ बात ही अलग है। तो आपने इतना प्यारा संदेश भेजा तो इसके लिए आपका धन्यवाद। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, रानू जी बताएं कि अगला संदेश किनका
0: जी
1: है।
0: अगला ये संदेश है ऋषि जी, पर्णकुटी गंगा आश्रम कबीरधाम छत्तीसगढ़ से मकु साहू का। जितना छोटा सा और सुंदर सा इनका नाम है, उतना ही छोटा सा और सुंदर सा इनका संदेश है। आपने 22 जून की बात लिखी है, 22 जून के गुलशन में पुराने फिल्मी गीतों की झड़ी लग गई, तन मन भीग गए, पुरानी कलियों पर महक नई कलियों से बेहतरीन, आज मौसम बड़ा बेईमान है, आया सावन झूम के। अच्छा, इन्होंने गीतों की बात लिखी है। काली घटाओं ने साजन को नटखट बना दिया, जैसे फूलों से इत्र बनाकर स्प्रे किया रानू जी ने, जिससे महक उठे घर आंगन। अच्छी प्रस्तुति हेतु बधाई, इत्रों से भिगाने के लिए धन्यवाद
1: जी। आज हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, 22 जून को ही रिकॉर्ड कर रहे हैं, और लगता है इन्होंने अभी अभी ही ये संदेश भेजा है और इसलिए हमने इनका संदेश भी शामिल कर लिया। और बहुत छोटा सा संदेश है और इन्होंने जिक्र किया है जो जो गाने आपने बजाए थे, और रानू जी आपको बधाई प्रेषित कर रही है, तो आप स्वीकार करें।
0: बिल्कुल, हृदय से आपका आभार व्यक्त करती हूँ। आपके ये जो सराहे गए शब्द है ना, वो हमारे लिए ऊर्जा का काम करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको मक्कू जी।
1: अब आगे बढ़ते हैं, बताएं कि अगला संदेश किनका है।
0: अगला नाम, ये संदेश है ग्राम बनबघेरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से योगेश सारवा का। आप लिखते हैं, आकाशवाणी जगदलपुर से साप्ताहिक कार्यक्रम की कड़ी में 7 जून को फोन इन चाहत का प्रसारण सुनने को मिला, जिससे अपनी बहुत ही सुंदर और मीठी आवाज के साथ सजा कर लाई थी हरिप्रिया जी। सचमुच कार्यक्रम से आकाशवाणी के जुड़ाव का एक अपना ही महत्व है। आप लिखते हैं कि कार्यक्रम से जुड़ने के लिए हम बेताब रहते हैं, अपनी बात, अपनी दिनचर्या और अपने कामकाज की बातें करते करते हम रेडियो सुनते हैं और अपने दिन को बेहतरीन बनाते हैं। रेडियो से हमारी संस्कृति और अन्य जगहों की जानकारी मिलती है, और बेहतरीन कार्यक्रम के लिए आपने हरिप्रिया जी को और साथ ही साथ आकाशवाणी जगदलपुर की पूरी टीम को शुभकामनाएं और बधाई दी है। साथ ही आपने लिखा है कि आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने पर आकाशवाणी परिवार को हमारी तरफ से मंगल कामनाएं
1: जी। तो योगेश सारवा जी, आपने समय निकालकर हमें संदेश भेजा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी कुछ देर पहले ही हम बात कर रहे थे कि आकाशवाणी जगदलपुर के क्या क्या लाभ हैं, और कुछ लाभ तो हमारे इन श्रोता ने अपने संदेश में लिख ही भेजा है। ये बात तो हम भूल ही गए थे कि हम लोगों

0: को आपस में जोड़ने का भी काम करते हैं। हमारे कार्यक्रम के माध्यम से एक स्थान के श्रोता को दूसरे स्थान की संस्कृति, वहाँ की भाषा, वहाँ के जो पर्यटन स्थल हैं, उसके बारे में भी जानकारी मिल जाती है
1: जी।
0: और हमारे श्रोता आपस में जुड़ भी जाते हैं। तो ये इन्होंने यहाँ पे, और हाँ, मनोरंजन की भी बात यहाँ पे लिखी है और ये भी कहा कि जब वो काम करते करते बैकग्राउंड में पीछे रेडियो सुनते रहते हैं, तो इतने लाभ तो इन्होंने ही गिना दिए हैं।
1: ऋषि जी, खुद के अनुभव के बारे में अगर मैं कहूँ तो सुबह उठते से मेरा रेडियो शुरू हो जाता है और वो जो पीछे जो ध्वनि या गीत या जो भी कार्यक्रम बजते हैं उससे मेरे हाथ दोगुनी
0: गति से काम करने लगते हैं। जी जी,
1: ये फायदा है रेडियो का।
0: और इन्होंने हमें आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने पर हमें बधाई दी है, लेकिन आकाशवाणी इतना लंबा सफर, 90 साल का सफर तय नहीं कर पाता अगर हमारे साथ हमारे श्रोता नहीं जुड़े होते।
1: बिल्कुल।
0: सबसे पहले आकाशवाणी 8 जून 1936 में बना था, तो 8 जून 2026 में इसको 90 वर्ष पूरे हुए हैं और इस अवसर पर हमने कई कार्यक्रम भी आयोजित किए थे, जैसे संगीत संध्या का आयोजन किया गया था हमारे आकाशवाणी जगदलपुर में, वाकाथॉन का आयोजन किया गया था, कई जगहों पे मैराथन भी आयोजित किया गया था। तो ऐसे कई कार्यक्रम हमने 90 वर्ष पूर्ण होने पर आयोजित किए थे और ये
1: पूरे
0: देश भर में आकाशवाणी के जो विभिन्न केंद्र है वहां से आयोजित किया गया था और ये हमारा एक तरीका था सेलिब्रेशन का, उत्सव मनाने का। किसी भी संस्था के लिए 90 वर्ष पूर्ण होना बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन आप सभी श्रोताओं का भी धन्यवाद कि आप इतने लंबे वर्षों तक हमसे जुड़े रहे, आपके बिना आकाशवाणी के लिए ये मुमकिन नहीं हो पाता। तो आप सभी का भी दिल से धन्यवाद और बधाई भी आप सभी को। अब आगे बढ़ते हैं, रानू जी बताएं।
1: जी, ये है नाम पीयूष भट्टी, अहमदाबाद गुजरात से। मुझे लगता है ये शायद पहली बार इन्होंने संदेश भेजा है। आप लिखते हैं आकाशवाणी जगदलपुर का कार्यक्रम, इन्होंने एक सोशल मीडिया का नाम लिखा है, उसके माध्यम से सुनने को मिला। ये कार्यक्रम बहुत ही अनूठे अंदाज में प्रस्तुत किया गया, जहां हम एक अधिकारी को उनकी कार्यशैली से जानते हैं, वहां उनके बारे में, उनके सफर के बारे में जानना रोमांचक रहा। बस्तर पुलिस महानिदेशक की सहज शैली अच्छी रही। संचालनकर्ता डॉक्टर मधु जैन ने बहुत ही अच्छे से अपना दायित्व निभाया। अच्छी प्रस्तुति के लिए चंद्र ऋषि ठाकुर जी को बधाई।
0: जी, ये हमारे पहली बार लगता है इन्होंने संदेश भेजा है, तो सबसे पहले हमसे जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद और स्वागत है आपका। और इन्होंने सही बात कही है यहाँ पे, क्या होता है हम जैसे हम लोग आम आदमी जो है वो धीरे धीरे पुलिस के प्रति जो विश्वास है उसको धीरे धीरे खोता जा रहा है और अधिकारियों के प्रति भी ऐसी आम धारणा बन गई है, चाहे आप माने चाहे ना माने, कि जो अधिकारी होते हैं वो भ्रष्ट होते हैं या फिर जो पुलिस होते हैं वो भी भ्रष्ट होते हैं, नेता भ्रष्ट होते हैं, जो किसी पद में है वो भ्रष्ट होता है, लेकिन ऐसा हर व्यक्ति के लिए नहीं कहा जा सकता, हर अधिकारी के लिए नहीं कहा जा सकता। और कई बार ऐसा होता है कि हम बस अपनी धारणा बना लेते हैं, सामने वाले के व्यक्तित्व को समझने की कोशिश नहीं करते, ये जानने की कोशिश नहीं करते कि वो किस मुसीबत से या फिर किन किन चुनौतियों का सामना करते हुए अपनी जिम्मेदारियों का वहन कर रहा है, बस हम अपनी धारणा को ही सही मान लेते हैं। तो हम इसी चीज को इस कार्यक्रम के माध्यम से रखना चाह रहे थे, हम चाह रहे थे कि जो आम जनता है वो जाने कि एक जो ऊंचे वर्ग का अधिकारी है वो किन किन चुनौतियों का सामना करता है, वो कैसे अपने कार्य का संचालन करता है। तो हमें लगता है कि हमारा ये जो प्रयास है वो सफल हुआ है, कि हमारे कम से कम एक श्रोता ने इस चीज को यहाँ पे लिखा है, नोटिस किया है। तो जिस कार्यक्रम को इन्होंने पसंद किया है, उस दिन हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया था बस्तर पुलिस महानिदेशक श्री सुंदर राज पी को, और वो बहुत ही सरल स्वभाव के हैं और बढ़िया उनका व्यक्तित्व है, और उनके कार्य के बारे में हमने जाना, उनकी चुनौतियों के बारे में हमने जाना और हमारा प्रयास सफल रहा, इस बात की हमें खुशी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, रानू जी आप बताएं कि अगला संदेश किनका है।
1: ये अगला और अंतिम संदेश है ऋषि जी, मदनपुर कवर्धा से श्रवण कुमार साहू, योगेश साहू और राहुल साहू का। आप लिखते हैं 7 जून को प्रसारित कार्यक्रम को लेकर आई थी प्रीति गुप्ता जी, आपकी प्रस्तुतियां हमें मनमोहक लगी और आपने जो मनभावन गीत श्रोता सुमन में हमें सुनवाए वो कर्णप्रिय थे और इस कार्यक्रम से हमारे पूरे परिवार का भरपूर मनोरंजन हुआ और हमें सीख और प्रेरणा मिली। बहरहाल सफल प्रसारण के लिए प्रीति गुप्ता और आकाशवाणी परिवार को बधाइयां।
0: तो सबसे पहले सभी साहू परिवार को संदेश भेजने के लिए धन्यवाद, और आपने यहाँ पे हमारी उद्घोषिका प्रीति गुप्ता जी के कार्यक्रम को पसंद किया है, तो आपकी जो बधाइयां हैं हम उन तक प्रेषित कर देंगे और हम यही कामना करेंगे, यही उम्मीद करेंगे आपसे कि आप हमारे केंद्रों से जो प्रसारित हो रहे हैं विभिन्न कार्यक्रम उनको सुने, उनका आनंद लें और सूचना ज्ञान इससे प्राप्त करते रहें।

0: तो ये आखिरी संदेश था और बहुत छोटा सा ही संदेश था।
1: जी, तो यहाँ जब जिक्र चल ही रहा है तो मैं भी अपनी ओर से ये दो शब्द जोड़ना चाहूंगी ऋषि जी। हमारे श्रोता जितने भी जो संदेश भेजते हैं ना, वो सामान्य तौर पे गीत संगीत पर बेस्ड प्रोग्राम के लिए ही होते हैं। तो हमारा ये निवेदन है कि वो जितनी जानकारियों से भरे हमारे कार्यक्रम रहते हैं उन्हें भी सुने, उनका लाभ लें और उनकी भी समीक्षा करें। बेशक मनोरंजन अपनी जगह तो है, लेकिन हमारा उद्देश्य
0: आपको ज्ञान देना भी है और जी
1: और मनोरंजन तो है ही, सूचना ज्ञान और मनोरंजन, ये तीनों हमारा उद्देश्य है
0: जी। तो ये आखिरी संदेश था रानू जी, अब समय आ गया है कि हम अपने श्रोताओं को अलविदा कहें, लेकिन जाने से पहले हम अपने श्रोताओं को मैसेज भेजने के लिए अपना नंबर जरूर बताना चाहेंगे। तो जल्दी से आप कॉपी पेन उठाएं और हमारा नंबर नोट करें। हमारा नंबर है 9425590590।
1: मैं एक बार नंबर दोहरा दूं, नंबर है 9425590590।
0: तो अब हमें कार्यक्रम पत्रांकन के इस अंक से दे अनुमति। नमस्कार।
2: अभी आपने सुना कार्यक्रम पत्रांकन, संपादन था रानू डाका और प्रस्तुति थी चंद्र ऋषि ठाकुर की। जारी है कार्यक्रम नमस्कार जगदलपुर।
3: विविध भारती के खजाने से हम आपके लिए लाते हैं अनमोल कार्यक्रम।
4: फौजी भाइयों की खिदमत में आपका खादिम नौशाद आदाब पेश करता है, कबूल फरमाइए।
3: कल और आज के ऐसे ही नामचीन सितारों को आप सुनते हैं विशेष जयमाला में हर शनिवार और रविवार शाम 7:05 पर। विविध भारती आप सुन सकते हैं देश के कोने कोने में, मीडियम वेव पर, शॉर्ट वेव पर, FM पर। विविध भारती आपकी बात पहुंचाए करोड़ों तक। विविध भारती पर विज्ञापन बुक कराने के लिए हमारा टोल फ्री नंबर है 15102 या लॉग ऑन करें csuair.org.in। विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन।
5: GST काउंसिल ने बीमा पर लगने वाले 18% टैक्स को घटाकर जीरो कर दिया है। ऐसे में जीवन बीमा लेने वालों को अब सिर्फ इंश्योरेंस का प्रीमियम ही भरना होगा और इस पर कोई भी अतिरिक्त टैक्स नहीं देना होगा। ये हेल्थ इंश्योरेंस लेने वालों के लिए बड़ा फायदा है, क्योंकि LIC को पहले से ही इनकम टैक्स में छूट मिली हुई है। वहीं अब GST भी हटने से बीमा लेना फायदे का सौदा होगा।
0: किसान भाई बहनों के लिए आकाशवाणी जगदलपुर की नई पहल, अब हर शनिवार को शाम 7:30 से 8 तक सुनिए फोन इन किसान वाणी, जहां कृषि विशेषज्ञ देंगे आपकी खेती से जुड़ी हर समस्या का आसान समाधान। बीज से लेकर बाजार तक हर सवाल का जवाब सीधे आपके लिए। और हाँ, इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी हर मंगलवार दोपहर 3:30 से 4 तक, तो आप भी जुड़िए और अपने सवाल हमें सीधे फोन पर बताइए। हमारा नंबर है 07782222666। फोन इन किसान वाणी, आपकी आवाज, आपकी कहानी, आपके खेतों की जुबानी।
2: श्रोताओं, हमने शुरू में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस की चर्चा की, पर आपको बता दें कि 23 जून केवल ओलंपिक दिवस के रूप में ही नहीं बल्कि कई अन्य महत्वपूर्ण अवसरों के लिए भी याद किया जाता है। यानी आज के दिन कई महत्वपूर्ण दिवस है जिन्हें मनाया जाता है, जिनमें एक है संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस, जो समाज के विकास में सरकारी सेवाओं और लोक सेवकों के योगदान को सम्मान देने के लिए मनाया जाता है। ये दिवस हमें याद दिलाता है कि जन सेवा केवल एक दायित्व नहीं बल्कि लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का माध्यम भी है। इसके अतिरिक्त आज का दिन अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, जो महिलाओं के अधिकारों, सम्मान और आत्मनिर्भरता के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है, जिन्होंने अपने जीवन साथी को खो दिया है। समाज में ऐसी महिलाओं को सम्मान समान

सहयोग मिले, यही इस दिवस का संदेश है। और आज के दिन यानी 23 जून को ही मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला इंजीनियरिंग दिवस। ये दिवस विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में महिलाओं की उपलब्धियों को सम्मानित करने और नई पीढ़ी की बेटियों को इंजीनियरिंग जैसे क्षेत्रों में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। श्रोताओं, विज्ञान, तकनीक और इंजीनियरिंग की दुनिया में आज महिलाएं नई ऊंचाइयां छू रही हैं। उनकी प्रतिभा और मेहनत आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बन रही है। सपनों को साकार करने का, चुनौतियों से जूझने का संकल्प और नई राहें बनाने का विश्वास, यही तो है जीवन की असली इंजीनियरिंग। उन सभी महिलाओं को हमारा सैल्यूट जो अपनी प्रतिभा, परिश्रम और नवाचार से आने वाले कल को बेहतर बना रही हैं। और अब सुनते हैं उम्मीदों और उड़ानों से सजा एक बेहतरीन

0: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
1: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
2: क्यों भाई?

0: तो शहर में, अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
1: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
0: आकाशवाणी से।
2: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर। आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।
3: नमस्कार, जगदलपुर में अब पेश है बद्रीमा।

कुछ साज केवल सुर नहीं बिखेरते, वे किसी की पहचान बन जाते हैं। किसी के लिए शब्द जीवन होते हैं, तो किसी के लिए संगीत सांसों की तरह होता है। जब मन की तन्हाइयों का साथी कोई धुन बन जाए, तो वह महज धुन नहीं रहती, बल्कि पूरी जिंदगी बन जाती है।

मोहब्बत जब दिल के तारों को छू लेती है तो हर धुन में किसी अपने की सदा सुनाई देती है। फिर दिल यही दुआ करता है कि उम्र भर की इस सरगम पर बस एक नाम लिखा रहे।

छाया की चादर में सिमटी हुई मुस्कान है, निगाहों में छुपा कोई मीठा सा अरमान है। धीरे से थाम लो धड़कनों की ये डोर सनम, मोहब्बत के मौसम में दिल भी बहकने लगे हैं।

ये थी आज की मधुरिमा। जिन फिल्मों के गीत आपने सुने वे फिल्में थी साहिबा, जाग उठा इंसान और मुकाबला। आवाजें थी हरिहरन, आशा भोसले, किशोर कुमार, अनुराधा पौडवाल और सोनू निगम की। मधुरिमा के इन मधुर गीतों के साथ ही कार्यक्रम नमस्कार जगदलपुर से अब जसवीर कौर को दीजिए इजाजत। नमस्कार, शुभ दिवस।

नमस्कार जगदलपुर, ये कार्यक्रम अभी पेश किया जा रहा था। आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। सुबह के 8 बजे को है। कुछ ही पलों में समाचार प्रभात हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत के तेजी से विकसित भरोसेमंद अर्थव्यवस्था और विश्व शक्ति बनने में राष्ट्र प्रथम का सिद्धांत प्रेरक बल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने लखनऊ अग्निकांड में 4 अधिकारियों को निलंबित किया, 4 और आरोपी गिरफ्तार। उर्वरक ले जा रहे 4 जहाज हॉर्मुज जल डमरू मध्य पार करने के बाद भारतीय बंदरगाहों की ओर बढ़े। कतर ने रास लाफान LNG विस्फोट में 12 भारतीय नागरिकों की मौत की पुष्टि की। और कैलिफोर्निया में आज से शुरू हो रहे US ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट में लक्ष्य सेन और तन्वी शर्मा भारत की अगुवाई करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के तेजी से विकसित भरोसेमंद अर्थव्यवस्था और विश्वसनीय विश्व शक्ति बनने में राष्ट्र प्रथम का सिद्धांत प्रेरक रहा है। नई दिल्ली में कल निजी मीडिया हाउस के सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि विश्वसनीयता, स्थिरता और वैश्विक हित के लिए प्रतिबद्धता पिछले दशक में भारत की उपलब्धियों के मूल में रही है। G7 शिखर सम्मेलन में भारत की भागीदारी का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि विश्व नेताओं ने राष्ट्रीय हितों की प्राथमिकता देने की भारत की अटल प्रतिबद्धता को साझा किया है। सरकार के 12 वर्ष के कार्यों का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने कहा कि स्वच्छ भारत, मेक इन इंडिया, खादी और स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने की पहल राष्ट्र निर्माण के लिए नागरिकों की प्रतिबद्धता में सफल हुई है।
1: पिछले 12 वर्षों के जो भी सिद्धियां देश की रही है उनके मूल में राष्ट्र प्रथम की भावना ही केंद्र में है। स्वच्छ भारत अभियान से लेकर मेक इन इंडिया, खादी खरीदने पर जोर, स्थानीय वस्तुएं खरीदने पर जोर, ये सारे इनिशिएटिव इसलिए सफल हुए क्योंकि देश की जनता ने देश को सबसे ऊपर रखते हुए अपना कर्तव्य निभाया।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि हाल के वर्षों में लगभग 25 करोड़ लोग गरीबी से उभरे हैं। श्री मोदी ने सस्ते आवास, कर सुधार, स्वास्थ्य देखभाल योजना और बेहतर शहरी बुनियादी ढांचे का उल्लेख किया। देश की मजबूत अवसंरचना पर बल देते हुए श्री मोदी ने कहा कि वंदे भारत, नमो भारत और अमृत भारत रेलगाड़ियां, विस्तारित राजमार्ग और हवाई अड्डों से संपर्क व्यवस्था में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है।
1: 2014 में करीब 28 लाख लोग हर रोज मेट्रो से सफर करते थे, आज करीब 1 करोड़ 28 लाख लोग हर रोज मेट्रो से सफर कर रहे हैं। अब वंदे भारत, नमो भारत और अमृत भारत जैसी अच्छी सड़कों, अच्छे हाईवे से समय तो बच ही रहा है, गाड़ियों की मेंटेनेंस पर होने वाला खर्चा भी कम हुआ है। बीते वर्षों में एयरपोर्ट की संख्या डबल हुई है, इससे कई छोटे छोटे शहरों में भी मिडिल क्लास को हवाई यात्रा की सुविधा पहली बार मिली है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि वैश्विक उथल पुथल के बावजूद भारत में अभूतपूर्व अवसर सृजित हुए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि 140 करोड़ भारतवासियों के सामूहिक प्रयासों से विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करने में सहायता मिलेगी।
1: भारत आज रिफॉर्म एक्सप्रेस पर सवार हो चुका है, ये गति आगे और तेज होगी कि हमारा सपना जितना बड़ा

0: इच्छा है हमारे प्रयास भी उतने ही विराट होंगे और 140 करोड़ देशवासियों का यही साझा प्रयास विकसित भारत बनाकर रहेगा।
1: राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने नई दिल्ली में कल ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 16वीं बैठक में चीन की विदेश मंत्री वांग यी के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। बैठक में दोनों देशों के संबंधों को सामान्य बनाने की दिशा में हुई प्रगति सहित आपसी सहयोग के महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। श्री डोभाल ने कहा कि भारत और चीन के बीच स्थिर, भरोसेमंद और सकारात्मक संबंध दोनों देशों के बीच विश्वास और बेहतर समझ को मजबूत करने में सहायता करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने हाल के घटनाक्रमों की समीक्षा की तथा सकारात्मक संबंधों की दिशा में हुई प्रगति पर संतोष व्यक्त किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। हमारी संवाददाता ने बताया है कि आज 2 पद्म विभूषण, 7 पद्म भूषण और 56 पद्मश्री सहित कुल 65 अलंकरण दिए जाएंगे।
2: इस वर्ष केंद्र सरकार ने कुल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की है। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। पुरस्कार प्राप्त करने वालों में 19 महिलाएं हैं, जबकि 16 सम्मान मरणोपरांत प्रदान किए जाएंगे। पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में शामिल हैं। आज राष्ट्रपति 65 विशिष्ट हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित करेंगी। इनमें टेनिस के दिग्गज विजय अमृतराज, अभिनेता ममूति, गायिका अलका याग्निक और भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा जैसे प्रमुख हस्तियां शामिल हैं। वर्ष 1954 में स्थापित किए गए यह पुरस्कार प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर घोषित किए जाते हैं। पद्म पुरस्कार कला, साहित्य, शिक्षा, खेल, चिकित्सा, सामाजिक कार्य, विज्ञान, लोक प्रशासन तथा व्यापार और उद्योग सहित विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट और विशिष्ट योगदान को मान्यता देने के लिए प्रदान किए जाते हैं। सौम्य शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: हमारी विशेष श्रृंखला पीपुल्स पद्म ऑन आकाशवाणी के अंतर्गत विशेष कार्यक्रम प्रसारित किए जा रहे हैं। इन कार्यक्रमों में पद्म पुरस्कार पाने वाले सम्मानित व्यक्तियों के जीवन, उनके कार्यों और समाज में उनके योगदान की जानकारी दी जा रही है।
3: नैराब का काम सीखा, अंगूरी का काम सीखा है, मोटी चिकन मामूली का काम, तो इसमें सबसे बारीक काम एक मरूरी का ही होता है, तो मरूरी का काम जो है लगातार नहीं किया जाता है, ये बहुत ही फाइन वर्क होता है।
4: जब हमारे मेजॉरिटी कम्युनिटी का यूथ और माइनॉरिटी कम्युनिटी का यूथ वो एक दूसरे को समझने की कोशिश करे, वो ये जाने कि कश्मीर का जो एक नॉर्मल सी के लिए वही गुलदस्ता जो कश्मीर जिसमें हमारे गांधी जी को किरण नजर आई थी या भारत का ताज के रूप में ये जो था, उसी गुलदस्ते को फिर से उजागर करने के, उसको बनाने के लिए हमने प्रयास करा।
1: ये विशेष कार्यक्रम आज सवेरे 9:10 से आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल 100.1 पर प्रसारित किया जाएगा। श्रोता इन्हें न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR के आधिकारिक YouTube चैनल पर भी सुन सकते हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIR News Hindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। लखनऊ अग्निकांड में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इनमें से 4 को कल रात गिरफ्तार कर लिया गया।
5: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर लखनऊ विकास प्राधिकरण, अग्निशमन विभाग और विद्युत विभाग के 4 अधिकारियों को भी निलंबित कर दिया गया है। अलीगंज पुलिस ने BNS और उत्तर प्रदेश अग्निशमन सेवा अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत 6 नामजद आरोपियों और अन्य जिम्मेदार व्यक्तियों के खिलाफ FIR दर्ज की है। राज्य सरकार ने आग की घटना की उच्च स्तरीय जाँच के आदेश दे दिए हैं। घटना की जाँच के लिए एक विशेष जाँच दल SIT का गठन किया गया है, जिसके सदस्य 7 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। SIT में अतिरिक्त मुख्य सचिव धर्मार्थ कार्य, पर्यटन और संस्कृति अमृत अभिजात और अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक लखनऊ जोन प्रवीण कुमार शामिल हैं। कल दोपहर लगी भीषण आग में कम से कम 15 लोगों की मौत हो गई थी, जिनमें ज्यादातर 16 से 25 साल की उम्र के छात्र थे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ नेफेड के नीलामी पोर्टल का शुभारंभ करेंगे। इससे नीलामी संबंधी गतिविधियों को सुगम बनाने और किसानों तथा कृषि संस्थाओं के हित में नेफेड की कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म उपलब्ध होगा। सहकारिता मंत्रालय ने बताया कि कार्यक्रम के दौरान श्री अमित शाह कई महत्वपूर्ण डिजिटल और किसान केंद्रित पहल का भी शुभारंभ करेंगे। यूरिया, डाई

0: फॉस्फेट और सल्फर लेकर आ रहे चार भारतीय मालवाहक जहाज होर्मुज जलडमरू मध्य सफलतापूर्वक पार कर चुके हैं। रसायन और उर्वरक मंत्रालय के अनुसार ये जहाज अब देश के विभिन्न बंदरगाहों की ओर बढ़ रहे हैं। इनमें आंध्र प्रदेश की कृष्णापट्टनम और काकीनाडा बंदरगाह, ओडिशा का पारादीप बंदरगाह और गुजरात का मुंद्रा बंदरगाह शामिल है। दोहा स्थित भारतीय दूतावास ने बताया है कि कतर के अधिकारियों ने रास लाफान क्षेत्र में रविवार रात हुई दुर्घटना में 12 भारतीय नागरिकों की मौत की पुष्टि की है। दूतावास ने शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की। घटना में घायल सभी लोगों को उचित चिकित्सा उपचार मिल रहा है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने भारतीय नागरिकों सहित अन्य लोगों की मौत पर गहरा दुख व्यक्त किया है। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोहा स्थित भारतीय दूतावास कतर के अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में है और भारतीय नागरिकों के परिवारों की सहायता कर रहा है। कतर की सबसे बड़ी गैस रिफाइनरी में हुए विस्फोट में 13 लोग मारे गए और 66 अन्य घायल हो गए। जम्मू कश्मीर पुलिस ने वार्षिक श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए परामर्श जारी किया है। यह यात्रा 3 जुलाई से 28 अगस्त तक आयोजित की जाएगी। कश्मीर से जम्मू जाने वाले वाहनों को सवेरे 11:30 बजे से पहले नवयुग सुरंग पार करने की अनुमति नहीं होगी। वहीं जम्मू से कश्मीर जाने वाले वाहनों को प्रतिदिन दोपहर 3 बजे के बाद सुरंग में प्रवेश नहीं मिलेगा। परामर्श में घाटी के कई महत्वपूर्ण स्थानों के लिए समय सीमा भी तय की गई है। और अब खेल समाचारों के साथ हैं आनंद पाठक।
1: कैलिफोर्निया में आज से शुरू हो रहे अमरीकी ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट में लक्ष्य सेन और तन्वी शर्मा भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। लक्ष्य सेन पुरुष सिंगल्स के पहले दौर में बेल्जियम के जूलियन कैरागी से खेलेंगे। किदाम्बी श्रीकांत अपने पहले दौर के मुकाबले में चीनी ताइपे के लियाओ झुओ फू का सामना करेंगे। वहीं महिला सिंगल्स में भारत की 7 खिलाड़ी मुख्य ड्रॉ में शामिल हैं। 17 वर्षीय तन्वी शर्मा जर्मनी की यवोन ली के खिलाफ अपना अभियान शुरू करेंगी। महिला डबल्स में ट्रीसा जॉली और गायत्री गोपीचंद पहले दौर में स्पेन की पाउला लोपेज और लूसिया रोड्रिगेज का सामना करेंगी। वहीं हॉकी में FIH प्रो लीग के शुरुआती मुकाबले में आज भारतीय पुरुष टीम का सामना पाकिस्तान से होना है। उधर फीफा विश्व कप में फ्रांस ने इराक को 3-0 से हरा दिया है। वहीं न्यूयॉर्क में नॉर्वे ने सेनेगल को 3-2 से हराया। इस बीच आज सवेरे 8:30 बजे से जॉर्डन और अल्जीरिया के बीच मैच खेला जाएगा। इससे पहले अर्जेंटीना ने ऑस्ट्रिया को 2-0 से हराया। दोनों गोल अर्जेंटीना के कप्तान लियोनेल मेसी ने किए। इसके साथ ही मेसी 18 गोल के साथ जर्मनी के मिरोस्लाव क्लोस का 16 गोल का रिकॉर्ड तोड़कर विश्व कप के इतिहास में सबसे अधिक गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं।
0: मौसम विभाग ने अगले 2 दिन तक असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के उप हिमालयी क्षेत्र और सिक्किम में बहुत तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। बिहार, अरुणाचल प्रदेश, तटवर्ती कर्नाटक, मध्य महाराष्ट्र, गोवा, ओडिशा, तेलंगाना, केरल और पूर्वोत्तर क्षेत्र में भी ऐसी ही स्थिति रहेगी। हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, तमिलनाडु, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बृहस्पतिवार तक तेज हवाएं चलने और गरज के साथ वर्षा का अनुमान है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in और हमारे newsonair मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
2: धन्यवाद मुकेश। अमेरिका और ईरान के बीच समझौते की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, अमेरिका ईरान के बीच बात बनी, 60 दिन में होगा अंतिम समझौता। ईरान के तेल से पाबंदी हटी, स्विट्जरलैंड के बुर्गेन स्टॉक रिसॉर्ट में घंटों चली वार्ता। बातचीत सकारात्मक और रचनात्मक माहौल में हुई, जेडी वेंस ने बैठक को ऐतिहासिक बताया। पंजाब केसरी ने तनाव के बीच उम्मीद शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, जेडी वेंस अमेरिका के भावी राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हो सकते हैं। उन्हें डोनाल्ड ट्रंप का राजनीतिक उत्तराधिकारी माना जा रहा है। अगर शांति समझौता

शिव जी के वहां प्रतिमा है, ओकर नाम से हमर मल्हार के नाम पड़िस, ऐसे हमर मानथन ओला मल्हारी शिव, शिव जी ला मल्हारी करके संबोधित करथन। तो मल्हार के बारे में दो तीन प्रकार के बात है, राग भी में मल्हार आते, और हमन चूंकि बहुतायत में वहाँ एक मुखी शिव जी से लेके 1000 शिवलिंग तक के मल्हार में हवा, वहाँ तालाब में है, घर मन में है, देवालय में है, तेकर नाम से

0: लेकिन मन के जब भी शैक्षणिक भ्रमण माथे तो मैं ये सब पिल्हर मल्ला उमल बड़ा गर्व से दिखाता हूँ घुमाता हूँ। उसी प्रकार से मलार के एक किसान है कुआं खोदे में गड्ढा करत रही से और वह जानत नहीं रही से और वहाँ जिन गड्ढा खोदत रही से वहाँ बने बुनाए वाला कुआं मिल गए। हमर मल्हार ऐसने ऐतिहासिक मल्हार है जी हाँ, पुराना संपदा भरे पड़े है। यदि मल्हार के उत्खनन किए जाए तो मैं तो कहता हूँ कि विश्व में शामिल करे के लायक, विश्व विरासत में शामिल करे के लायक जगह बन जही, ऐसे मोर मानना है। मल्हार के उत्खनन में एकर पहली भी बहुत सारा सामग्री मिले है। सागर विश्वविद्यालय के बड़े बड़े इतिहासकार डॉक्टर कृष्ण दत्त वाजपेयी जी वहाँ के प्रमुख रिन है मध्य प्रदेश के समय में, वो उत्खनन करा रही से तो मल्हार में प्राचीन बस्ती दबे मिले रही से। मल्हार में एक शिव मंदिर है, वह भारत में अद्वितीय शिव जी के मंदिर माने जाते। मंदिर के आधार पीठिका 108 कोण वाला है और वहाँ वास्तुशास्त्र के 250 विशेषता तो मैं ही बता सकता हूँ, मानो और बहुत सारा विशेषता हुई। प्रवेश द्वार में गंगा यमुना काल भैरव बैठे है, वहाँ कल्पवृक्ष पायदान में बैठे है, भगवान नवग्रह ऊपर में पैनल के रूप में है, गणेश जी के दो पत्नी रिद्धि सिद्धि दोनों दिशा में बैठे है। तो इसना मल्हार के महिमा महान है। मल्हार के कण कण में देवता धामी है। यहाँ 126 तालाब है, जिला हमन छत्तीसगढ़ी में छह अगर छह कोरी कतन छह अगर छह कोरी तालाब उहू जम्मू है भगवान के नामकरण में है। कोनो के नाम ऋषि मुनि के नाम से है, मार्कंडेय कुंड, कोनो के नाम राम सागर, लक्ष्मण सागर, परमेश्वरा सागर, ऐसे टाइप के सब प्राचीन समय में जुन्ना टाइम में हमर सियान मन पुरखा मन एक नामकरण भी लो उसने है टाइप के रखे है। मल्हार हमर दक्षिण कौशल के राजधानी रही से एकर प्रमाण मैं आप लोग जरूर बता सकता हूँ। महू अपन 25-30 साल 40 साल ले पिताजी के दादाजी के सानिध्य में रहे, यहाँ के उत्खनन वगैरह लम्बा देखे। यहाँ एक बंदरगाह भी है लीलागर नदी में।
1: अच्छा।
0: वो बंदरगाह लीलागर नदी से शिवनाथ नदी जाते और शिवनाथ नदी है जोड़ते वाला उड़ीसा के बॉर्डर में। अल हमन कौसाम्बी के मार्ग कथन इतिहास के भाषा में या राष्ट्रीय सेमिनार में जाथन तो सुनथन ये वही मार्ग है। इमल वो समय व्यापार होते रही जल मार्ग से, ओकर स्पष्ट प्रमाण मल्हार में हवा। ये तरह से शोधार्थी भर पढ़िया लिखैया भर इतिहास के सिक्का ताम्रपत्र मल्हार से प्राप्त शिलालेख एवं प्रचुर मात्रा में अध्ययन करे भर बहुत सामग्री है। मल्हार एक बहुत विशेषता लिए हुए नगर है, प्राचीन गौरव वाला जगह है और ओकरे हम बड़ा गर्व से कथन कि करे जन वृद्धि शोभा के ओला सिंगार कथे और करे हर मन ल जन मोहित ओला मल्हार कथे, ऐसे के एकटन हमन कहावत भी कथन।
1: जी जी, आप जैसा जानकारी दे था हमन ला तो ऐसा लगा थे कि हमन कथा सुनत हन, है ना?
0: जी हाँ साहू जी,
1: कथा के रूप में और भी हमन बाद में चर्चा करबो
0: जी।
1: अभी जो पुरातात्विक स्थल मल्हार के बारे में आप चर्चा कर रहा था
0: जी,
1: यहाँ जो मूर्ति मिलते वो कौन कौन से देवी देवता के मूर्ति मिलते और कितना पुराना रथ है?
0: मल्हार में चारों संप्रदाय के जैन बौद्ध वैष्णव शैव चारों संप्रदाय के प्रतिमा मल्हार में भी संग्रहालय में संजो के संस्कृति विभाग रखे हुए है। चारों संप्रदाय के प्रतिमा मिलते मूल तो इसे लगते बहुत बड़े बड़े विद्वान मनाते उनको सानिध्य भी मूल मिलते। तो मल्हार है एक समन्वय स्थल भी रही से, मल्हार में सबो संप्रदाय के प्रतिमा विद्यमान है, एकर से एक कला केंद्र के रूप में विकसित रही सो ही ऐसे लगते और समन्वय स्थल भी रही से।
1: काफी प्रसिद्ध जगह है ये मल्हार हर, तब मुझे लगते ना कि कहीं ना कहीं से मल्हार की चर्चा माननीय प्रधानमंत्री जी मन की बात कार्यक्रम में करें और विशेष रूप से ताम्र पट्टिका के बारे में। और ये जो ताम्र पट्टिका है ये आपके घर में सुरक्षित है, संरक्षित करे के प्रयास आप करे हो,

0: आपके घर से माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यालय तक, फिर प्रधानमंत्री जी वाला मन की बात कार्यक्रम में शामिल करें, ये यात्रा के बारे में बतावा, कैसे पता चलिस कि आपके घर में ये अमूल्य संपत्ति है आज की तारीख में?
1: जी, मोर दादाजी पंडित छेदीलाल पांडे है, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रिस है।
0: हाँ।
1: और वो हर पुरातत्व के प्रति बहुत समर्पित व्यक्ति रिन है। मैं मिडिल स्कूल के छात्र रहे हूँ और मोर पिताजी है रघुनंदन प्रसाद पांडे, राष्ट्रपति सम्मानित रिन है, जिन मल्हार के इतिहास में 4 ही पुस्तक लिखे है आज से 82 में। और इमन पुरातत्व के प्रति अतका समर्पित व्यक्ति है कि मल्हार के हर पथराल इमन देवता मानत रिन है। अतका समर्पित व्यक्ति है, इमन मैं बचपना में देखत रहे, इकर सानिध्य मिलत रिस है और ऐसे करके इकर संग्रह मैं देखा और समय बच्चा रहे मैं तो सिक्का मिला है, मोर पिताजी लाख वाला बहुत सुरक्षित अमूल्य धरोहर के रूप में रखा है, यह हमारे राष्ट्रीय धरोहर की के मोला बतावा है, यही है हमारे मल्हार असली मल्हार की के। ऐसे टाइप के एक निजी संग्रह बना के मोर पिताजी रखिन, वो संग्रहालय में आज मौर्य शासक मन के टेराकोटा आर्ट के पार्ट्रीज मन है, वो समय के राजा मन के टेराकोटा में जिन सील बने हैं, सील के उपयोग करे वो सील हम संग्रह में है। मोर पिताजी के ये संग्रह में एक किसान खोदत रिन्हे मल्हार में, जुताई करते रहे कृषि काम के, जुनवानी खार कथन मल्हार के हो सबले प्राचीन जगह है, प्राचीन क्षेत्र है, एक ठन तो सोनवर्षा खार भी है। मल्हार में बहुत सारा सिक्का मिले है और आज भी मिलत थे
0: सोना के।
1: जी हाँ, तांबा के, जस्ता के, चांदी के, सोना के। मल्हार राजधानी रिसे तो राजधानी माने समृद्धता के एक पहचान भी है और ये सब मिलते ओकर से प्रमाणित भी हो जाते। सबले पहली मैं उल्लेख कर बतावत रहे कि तालाब ओ समय राजधानी में इनकम ऑफ सोर्स राजा मन के तालाब से होत रिसे, तो इसने ये सिक्का वगैरह जारी हुआ है उहे तो सिक्का मिली। मल्हार से सिक्का जारी करके पत्थर के ढलवा भी है, वाला ढलाई करत इन्हें राजा के समय सिक्का जारी करे, वो सब ढलाई के पथरा मोकर खांचा सांचा सब यहाँ विद्वान है, तो यहाँ से सिक्का भी बहुत मिलत रहते। आज भी पानी के कटाव में हम लेकर रहे तो खोजे जाते रहे, हम पिताजी का अनुसरण करते हुए उनकर देखन नकल कर करके सिक्का पाबो सामान पाबो ऐसे की के, तो ऐसे करके संग्रह मोर पिताजी है समृद्ध बनाये। स्वर्गीय रघुनंदन प्रसाद पांडे 4 पुस्तक भी लिखिन और शिक्षा के क्षेत्र में राष्ट्रपति पुरस्कार मिले सुनला उनकर विद्यालय में, तो ये संग्रह ल बढ़ायन और ताम्र पत्र उन्हीं प्राप्त हो, पूरा क्षेत्र में हल्ला हो गई से कि मल्हार के इतिहास पुरातत्व ल संजो के रखने वाला परिवार है वह स्वर्गीय रघुनंदन प्रसाद पांडे छेदीलाल पांडे पांडे परिवार है की के। तो ये ताम पत्र खेत के जोताई में एक किसान मिलिस, वह हमर पिताजी से बहुत प्रभावित व्यक्ति रही से, उकर विद्वता से, उकर हर चीज से, वह आके बताइस फिर कि महाराज ये ताम पत्र हल पाए हो की के। वो किसान लगले हमर पिताजी के पास आईस, मोर पिताजी ओला अपन हाथ में रखिन और वो समय में पुरातत्व विभाग के पूरा अधिकारी लग खबर करिन। मोले याद है बिलासपुर में संग्रहाध्यक्ष जिला रजिस्ट्रीकरण अधिकारी आनंद कुमार रिसबुट साहब रिन है, ओला दिन ओ मल्हार आइस, मल्हार आइस तह ओला ओकर अवगत कराइन, ओकर प्रिंट वगैरह लेगिन, ओकर बारे में पूरा डिटेल लग बाहर भेजिन और ओला पता करिन, तो वो राजा महाशिव गुप्त 12 अर्जुन के ताम पत्र के उल्लेख ल 2 पन्ना में फिर साहब एक हफ्ता के अंदर अवगत कराइन हमर पिताजी ला। ऐसे करके ताम पत्र वगैरह सब मल्हार के प्राचीन धरोहर संरक्षित करे बर संजोए बर हमर पिताजीवन प्रयास करिन, ओगला महू आगे बढ़ाए। आज मोर पिताजी भी नहीं है, दादाजी भी नहीं है, वो संग्रह मैं रखे हुए हूँ, ये उकरे असली मेहनत है, मैं तो उमा आगे जरूर बढ़त हूँ लेकिन ये उकरे तपस्या मानत हूँ मैं, उकरे संग्रह है मल्हार लजन हर पत्थर देवता के समान माने ऐसे समर्पित व्यक्ति रिन है। और ताम पत्र आइस और मोर संग्रह में पिताजी के संग्रहालय में लगभग सिक्का भी है, वह बहुत सारा सिक्का है जिन कई प्रकार के कई काल पीरियड के कई राजा मन के है, खरोष्टी भाषा के है, रोमन भाषा के है, ब्राह्मी लिपि पाली भाषा के जनरली मिलवेज करते मल्हार जितका भी लेख वगैरह मिले है, एक शिलालेख भी मोर घर में है।
0: मैं ये आपने जानना चाहते रहे संजीव जी कि ये जो ताम्र पट्टी का मिले है ओकर खासियत का है, उसमें का अंकित है, कौन से भाषा में का लिखे है, कुछ एकर बारे में बतावा।
1: ये ताम पत्र राजा महाशिवगुप्त 12 अर्जुन के समय के ताम पत्र है, ये ताम पत्र के वजन है।

0: 3.5 किलोग्राम के लगभग है। यह 3 पट्टिका में हवा साहब, 3 फलक में हवा, और एक बढ़िया गोलवा रिंग में गुथाए हुए है। ऐल हमन कंप्लीट कथन ऐसने एक ठी सिंगल फलक भी है, ओकराऊ कहीं भाग रिस हुई एक तामपत्र राजा भरत बल के मोरिया आउ रखा है संग्रह में, तो वह इनकम्प्लीट है, अधूरा है, लेकिन यह पूरा रिंग से बढ़िया गुथाए हुए है और 3 ठीक पट्टिका है। और वह सुंदर ढंग से हमर प्राकृत भाषा, पुराना भाषा, ब्राह्मी लिपि में, पाली भाषा में उमा लेख खुदे हुए है, उत्कीर्ण है। और एकर लंबाई मोटाई है लगभग आधा आधा फीट के है तीनों फलक के। और यह रिंग में गुथे जन रिंग में उमा एक पद मुद्रा लगे हुए है, वो पद मुद्रा है गोल साइज के है। वो गोलवा साइज में देखथन तो बहुत सुंदर भगवान शिव जी है नंदी में सामने बैठे हुए है। उमा शुभ के रूप में एक कमल फूल दर्शाया गया है, उमा त्रिशूल दर्शाया गया है, उह में छोटा सा एक ठो लेख भी है वो ताम पत्र के हल्का सा डिटेल के बारे में, वो कब के कायतन है। यह राजा महाशिवगुप्त बालाजुन के ताम पत्र है जिन मल्हार के जुनवानी खार में मिलिस, मल्हार से प्राप्त हुई, 3 फलक में है, शुद्ध तांबा के है साहब यार
1: जी। जी बहुत बढ़िया, आप सरल भाषा में हमारे श्रोता वाला जानकारी दे हा आप मन। आपसे अब जानना चाहतन, बार बार हमन चर्चा करतन कि प्रधानमंत्री मोदी जी आपके शहर के, आपके ताम्रपट्टिका के उल्लेख करें, है ना
0: जी।
1: एक जो ज्ञान भारत टीम जो है आपके घर पहुंची
0: जी,
1: वो मतलब कैसे पता चलिस कि आपके घर में अमूल्य धरोहर है, और का क्या प्रक्रिया अपनाइन कि ये जो घटना है राजधानी तक पहुंची सवेला मन की बात कार्यक्रम में माननीय प्रधानमंत्री जी अपन विचार ल साझा करें
0: जी। ज्ञान भारत बिलासपुर के टीम है साहब, जिला पंचायत अधिकारी से मोर व्यक्तिगत परिचय से संदीप अग्रवाल साहब से, तो मल्हार आते तेल मतलब घुमाथन हमन तो व्यक्तिगत रूप से हमारे जानत रहते, तो मल्हार वाला महाराज लंग जा तो बहुत जुन्ना जुन्ना संग्रह है, क्योंकि पूरा टीम लग ज्ञान भारत के भेजिस जिला पंचायत सीओ संदीप अग्रवाल साहब हर, तो वो टीम हम मल्हार आईन, मल्हार बढ़िया भेंट हुई बैठेन, मोर संग्रह ल देख के बहुत प्रसन्नता व्यक्त करीन। वो संग्रह में ये ताम पत्र ल मैं उमल दिखाए, ताम पत्र ल उमन बहुत खुशी होके वीडियो रिकॉर्डिंग करीन, ओकर पूरा डिटेल नोट करीन, ओकर सब प्रकार के जिन माननीय प्रधानमंत्री जी है हमार पांडुलिपि सर्वेक्षण अभियान जिन चला थे केंद्र सरकार के द्वारा, उमा पांडुलिपि सर्वेक्षण में बहुत सुंदर चीज हमन पागन की के एकदम खुश हो गए, गदगद हो गए हमार पांडे जी के संग्रहालय। और मल्हार में आयन तो बहुत बढ़िया हमार आना सार्थक हो गए, ताम पत्र देख के बहुत खुशी व्यक्त करीन, ओकर पूरा फिर डिटेल नोट करीन, फोटो खींचीन, ओला सब अवगत कराए में है कब मिलिस का हुईस सब प्रकार के ला, हम बहुत प्रफुल्लित होएन कि कतका बढ़िया हमर माननीय प्रधानमंत्री जी है, अतका बढ़िया पुराना सामग्री मन के महत्व ला बढ़ाए बर, ओला सामने लाए बर, भावी पीढ़ी में अवगत कराए बर, अध्ययन करे बर, संजोए बर, अतका बढ़िया प्रयास करत है कि और उमन ले के गईन है, तहा 8-15 दिन में मोला फिर सूचना आ गए, हमन बहुत खुशी होएन, मल्हार के मन लम्बा बताए बहुत प्रसन्नता हुई, मोर परिवार में एकदम खुशी के माहौल छा गए, हमर पिताजी दादाजी मन पुरखा मन अतका बढ़िया जेन चीज ला संग्रहित करके रखे है, आज ओकर महत्व कतका बड़े है ओला हमन समझेन, पहले भी समझत रहन, लेकिन आज हमन एक ठन थोड़ा सा प्रोत्साहन बरोबर मिल गए माननीय प्रधानमंत्री जी के मन के बात के एपिसोड में, हमर ताम पत्र के उल्लेख आही और तुम्हार चयन कर लिए गए है कि मोला बिलासपुर कलेक्टर द्वारा सूचना दिए गई।
1: अच्छा,
0: माननी संजय अग्रवाल के द्वारा एसडीएम साहब फोन करके बताइन कि महाराज मल्हार के तुहर समान है संग्रह में ताम पत्र के, ताम पट्टिका के ओकर उल्लेख माननीय प्रधानमंत्री जी है अपन एपिसोड में 31 मई के करही, आप लोग संभवतः संयोग में भाग्यशाली हो हा, बात भी हो सकत है आप कहूँ झंझा के तो हमन बहुत प्रसन्न हो भाई और बहुत प्रसन्नता हो मल्ला कतका बढ़िया हम लगिस, मल्हार के हमारे इतिहास राष्ट्रीय स्तर में पहचान बनत है, और ये ताम पत्र माननीय प्रधानमंत्री जी है माननीय मोदी जी है अपन आखर से बोलिन मन के बात में, ओहल हमन बहुत ध्यान से पूरा चौपाल बना के गांव में गुड़ी में रेडियो में सुनत रहन, बहुत खुश होन, फटाका फोड़ेन, मिठाई बाटेन, बहुत खुश होन, एक दूसरे बधाई देन हमर।

0: छत्तीसगढ़ के प्राचीन दक्षिण कौशल के राजधानी कथे तेन मल्हार लाज हमर माननीय प्रधानमंत्री जी मन के बात में उल्लेख करत है। यहाँ के ताम्रपत्र के कतका बढ़िया उल्लेख आ गए, राष्ट्रीय पहचान मिल गए कि हमन पूरा गांव क्षेत्र में एकदम गदगद हो गए साहब
1: जी। पांडे जी आपन चौपाल लगा के पूरा गांव वाला मन आपन सुना
0: जी।
1: मन की बात कार्यक्रम ला
0: जी।
1: हर एपिसोड में कोई न कोई बात होते जो हर आदमी ला प्रोत्साहित करते
0: जी। हाँ साहब,
1: ऐसा ऐसा बात बताते हैं जिला हमन कल्पना भी नहीं कर रहे, लेकिन प्रधानमंत्री जी कहीं न कहीं से सूचना मिलते और वो बात मतलब वो शामिल करते हैं। ऐसे ही ये घटना आपके मल्हार में भी घटी
0: जी।
1: आपन खुशी भी व्यक्त करा और जब आपन खुशी व्यक्त करा और चर्चा हुई साफ मन के मल्हार के, एक बात तो एक पूरा उत्सव जैसा माहौल हो गए और जनप्रतिनिधि मन अधिकारी कर्मचारी मन आप मन से फिर तो संपर्क करीन हुई, अलग अलग तरह से लोग अपन खुशी जाहिर करीन हुई, तो कैसे कैसे आप मन के भेंट मुलाकात हुई इस लोग मन से, जनप्रतिनिधि मन से, विधायक मन से, मंत्री मन से, हर कोई आप मन से, मल्हार वासी मन से, वो खास करके आप मन से मिले के प्रयास करीन हुई।
0: मन की बात के जहाँ उद्घोषणा हुई कार्यक्रम में देखिन तो सबले पहली मुला कर्नाटक के बुलगरगा यूनिवर्सिटी के एक जन प्रोफेसर मोर संगी जिन मल्हार के भ्रमण कर रहे से।
1: अच्छा।
0: और बिहार के जिला पुरातत्व के डॉक्टर विशु उपाध्याय जिन डिप्टी डायरेक्टर है बिहार सरकार में, उमन आए रहे अवन मोला फोन करके बताइन कि महाराज तू तो टीवी में दिखा था, बधाई हुआ मन के बात कार्यक्रम में मल्हार के जिन ताम्रपत्र हम देख के आए रहे ओला आज प्रधानमंत्री जी संबोधन कर रहे थे कि तो मैं फिर महू टीवी में चालू करके देखे और देखे उकरे बधाई सबले पहली मूल्य मिलीस। तहा बिलासपुर के अधिकारी, रायपुर के मूर्जत का परिचित अधिकारी रिन है, विश्वविद्यालय के रायपुर के डॉक्टर नीतीश मिश्रा जी रिन है, इतिहास विभाग के जिन प्रमुख है रविशंकर यूनिवर्सिटी के ऊ फोन बधाई दिन जम्मो लगाले बहुत जन के मूला लगातार बधाई मिले लगीस। तो मोरो छाती फूलिस कि मैं मल्हार में पैदा हुए। मल्हार एक ऐसे बहुत सुंदर नगर है, प्राकृतिक नगर है, पुरातात्विक संपदा के धनी नगर है। मैं बिल्कुल अपन खुश हो गए, मैं भगवान मोला बहुत अच्छा जगह पैदा करीन कही के। अब बहुत सारा मोला लगातार बधाई एक हफ्ता ले चलत रही साहब
1: जी। ये बीच में हम प्रयास करें आपसे भेंट करे के, फोन के माध्यम से आपसे बातचीत हुई, व्यस्तता आपके रही से, अब थोड़ी व्यस्तता कम है तो आप आकाशवाणी रायपुर के स्टूडियो बुला के यहाँ आपसे हम लंबी बातचीत कर रहा था, है ना
0: साहब।
1: पांडे जी
0: जी सर,
1: ये सारा चीज इतना बड़ा घटना घटिस
0: जी,
1: है ना, खुशी मनाया खूब आप मन, है ना
0: जी।
1: आपके तीन पीढ़ी लगातार मल्हार और आसपास के क्षेत्र में जितना भी पुरातात्विक जिनिस जो मिलते ये मल्ला आपन संरक्षित करे के प्रयास करा था, आप मन के पूरा टीम है जिमन एकर संवर्धन पर लगे हुए हैं, और समय बेसमय जो कुछ घटनाएं भी घट जाते कि कोई मूर्ति उठा के ले जाते, कुछ ये करते वो करते, ओकर से बहुत सारा नुकसान भी होते कि जो सुधार्थी है वो मल्ला ओमन वंचित हो जाते हैं ओकर से। तो आपके मल्हार के जितना भी पुरातात्विक चीज है, महत्व के चीज है, ये मल्ला सुरक्षित रखे खातिर, संरक्षित करे खातिर आप गांव वाला मन के का प्रयास होते कि ये सब सुरक्षित रहे और नई पीढ़ी ज्यादा से ज्यादा एकर से जुड़ सके।
0: हाँ साहब, यही हमार राष्ट्रीय धरोहर, राष्ट्रीय धरोहर के पहचान है, प्राचीन संस्कृति ही है। तो हमला पुराना संस्कृति के बारे में ज्ञान दही हमर पूर्वज मन, जब रजिस्ट्रार नहीं रही होतरी से, वो समय पुलिस के व्यवस्था नहीं रही से, तो प्रशासक मन का करत रही है, राजा के द्वारा मा कैसे शासन चलत रही से, यही है हम इतिहास पुराना चीज अवगत करा थे। वो सब्य समान हमर मल्हार में है, वो समय दंड के प्रक्रिया के कतका बढ़िया मल्हार के पत्थर में अंकित है, चोर मन ला दंड दिया जाए तेन हर। और अभी जन ताम्रपत्र उल्लेख करत रहन, यह वही है राजकीय आदेश या जमीन के राजा मन एक दूसर लंग आदान प्रदान कराए, खरीदी बिक्री कराए, लेन देन कराए, तो दान पत्र ताम्रपत्र के माध्यम से कराए। ऐ है थमल नया पीढ़ी ला

0: थे कि हमर प्राचीन संस्कृति का रहिसे और समय कतका हमन समृद्ध रहन और आगे रहन, हमर नया पीढ़ी पर शोध पर ये सब बहुत आवश्यक है। हमला पुरातत्व संपदा ला अक्षुण्ण बनाए रखे पर मेहनत करना चाहिए। ये हमर भावी पीढ़ी है, एकर से ज्ञान प्राप्त करी और निश्चित ही एकर से हमन आगे बढ़बो, हमला बहुत ज्यादा पढ़ाई के मौका मिली।
1: ऐसा एक प्रयास है आप मन के, जी, के बहुत जी. अच्छा प्रयास है। कुछ और जैसे आप दो लाइन के मल्हार के बारे में आप सुनाए, ऐसे कुछ और बात है जो आप सुनाना चाहते हो?
0: जी हाँ, हमन मल्हार के प्राचीन मंदिर मूर्ति ल देखथन तो उपेक्षा भी वह थोड़ा सा तरस आते। एक अच्छा आकर्षक हमर छत्तीसगढ़ राज्य के संग्रहालय है मल्हार में बन जतीस तो हमर पुरातात्विक संपदा जिन धूप पानी में नष्ट हुआ थे ओकर संरक्षित हो जातीस कहके तो एक बारे में अक्सर हमर पिताजी है कहे अपन रचना में, हे मल्हार बीते वैभव की तू है अमर कहानी, हे मल्हार बीते वैभव की तू है अमर कहानी, तेरी स्मृति में आंखों से बह जाता है पानी। एक टन छोटा सा व्यथा भी है मल्हार के किंवदंती है, रैया के सिरजे रैया रतनपुर, रैया के सिरजे रैया रतनपुर, राजा बेनियु के सिरजे मल्हार। यह हमर पुराना लोकोक्ति मुहावरा में सियान मन कहे।
1: जी बहुत बढ़िया, आप चार लाइन में आप बताया। चलते चलते आप से एक और छोटी सी बात

0: मतलब आपके पिताजी बहुत तेला सुरक्षित रखें, अध्ययन करें, आप लभी बताएं। ओकर से पहले आपके दादाजी जल हम छत्तीसगढ़ी में बाबा कथन
1: बाबा जी हाँ।
0: है ना, बाबा के हाथ में इस, बाबा के बाद दादा के हाथ में इस, दादा के बाद आपके हाथ में इस, आपके बाद अगली पीढ़ी में भी आई। तो आप ऐसे परिवार से जुड़े हुए हैं जेकर आज पूरा राष्ट्र में चर्चा होते, कैसा महसूस करता आप और का करना है आप लागे?
1: यह एक ठन मुला बहुत बड़े जिम्मेदारी के एहसास हो गए साहब, मुला बहुत ही प्रफुल्लित हुए मन के बात माया के बाद। एकर पहली मैं लगन से काम भी करत रहे हूँ और अतका बढ़िया मुला उल्लेख माननीय प्रधानमंत्री तक मल्हार के बात है, हमन के परिवार के माध्यम से मोर पिता जी मन के प्रयास के माध्यम से पहुंचिस, उमा बहुत खुशी हुईस और मैं एमा मुला काम करे के क्षमता और बढ़ गए, मोला जिम्मेदारी के और ज्यादा एहसास होए लगिस। मोला बहुत सारा यहाँ के पुरातत्व संपदा, छत्तीसगढ़ के पुरातत्व संपदा के बारे में रक्षा करे बा मोला एक ठन बड़े समिति बना के काम करे की इच्छा होते। मल्हार के लिए तो हमन तो लगे छुए हैं समर्पित भावना से, यहाँ एक निजी संग्रह ही है हमार तीन पीढ़ी के पहचाने, जेल हम सरकार के सब राष्ट्रीय धरोहर संजो के रखे हुए हैं। तो मोला बहुत प्रोत्साहन लगी से, मोल बहुत अच्छा लगी से और मोर जिम्मेदारी बहुत बढ़ गई ऐसे मैं मानता हूँ और मोला बहुत काम करे हुए अपन जिंदगी भर
0: जी। आप लगातार पुरातत्व के क्षेत्र में आप काम कराओ और जो नई पीढ़ी है इला भी आप समझाए के कोशिश करा, जोड़े के प्रयास करा। अभी हम श्री संजीव पांडे जी से बातचीत करत रहे और ये बातचीत के विषय रहिस पुरातात्विक स्थल मल्हार के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व। आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद।
1: जय जोहार, धन्यवाद साहब।
0: और एकरे संग मोर भुइया के आज के व्यंकले मोला यही विदा देवा। जय जोहार, राम राम।

0: अभी आप सुन रहे थे छत्तीसगढ़ी में समन्वित साहित्यिक कार्यक्रम मोर भुइयां। संपादक और प्रस्तुतकर्ता थे महेंद्र साहू। ये
1: वीडियो वेव 396.82 मीटर अर्थात 756 किलोहर्ट्ज़, एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर हम आकाशवाणी के जगदलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 9 बजे है।

0: भारतीय वास्तु और स्थापत्य का इतिहास अत्यंत प्राचीन है। आदिकाल से ही लोक जीवन में धर्म का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। जीवन के बाद पुनर्जीवन की भावना से ही स्वर्ग और नरक जैसे शब्दों का प्रचलन हमारे आचार और व्यवहार में निरंतर मिलता रहता है। स्वर्ग कहाँ है और नरक किसे कहते हैं, इसकी व्याख्या बहुत कठिन है। जहां तक ऐतिहासिक साक्ष्यों का प्रश्न है, ऐसी मान्यता प्रचलित है कि हिमालय के उत्तुंग शिखर और क्षेत्र जहां स्वर्ग है, वहीं धरती का निचला भाग नरक का क्षेत्र है।
1: स्वर्ग में 33 कोटि देवता जहां निवास करते थे, वहीं देवलोक में जगह की कमी के कारण हिमालय के निचले भाग में देवों ने बस्तियां बसाई। स्वर्ग में बहने वाली गंगा नदी को भागीरथी ने प्रयत्न करके स्वर्ग क्षेत्र से नरक क्षेत्र में उतारा, पूर्वजों का उद्धार किया।

0: प्राचीन काल में नदी मार्ग से यात्रा की जाती थी। मान्यता चल निकली, गंगा में धार्मिक कृत्य विसर्जन तर्पण से मनुष्य स्वर्ग चला जाता है, क्योंकि गंगा स्वर्ग का सुगम मार्ग है।
1: लोक जीवन में स्वर्ग के पृथक पृथक प्रतीक आज भी पूजे जाते हैं। देवलोक का सूर्य, नागलोक का सर्प, गंधर्वों की वीणा, यक्षों का कमल और किन्नरों का हंस अथवा सिंह प्रागैतिहासिक काल से पूजनीय बने हुए हैं। प्राचीन चित्रकला, स्थापत्य, वास्तुशिल्प में ये पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ रूपांकित किए जाते रहे हैं।
0: हमारे मंदिरों की वास्तुकला एक विचित्र शैली में है। ऐसा लगता है हिमालय के गिरिशृंगों के संस्मरण में शिखर द्वार ही बनाए जाते हैं, जहां हमारे पूर्वजों का स्वर्ग था। इस प्रकार मंदिरों की वास्तुकला हमारी उस राष्ट्रभक्ति का प्रतीक है, जो स्वर्ग के इतिहास को हमारे जनजीवन में स्थापित किए हुए है। इन प्रतीकों में यदा कदा परिवर्तन भी हुआ, लेकिन वे भी उतने ही पूज्य बने। जब नागों ने त्रिपुर विजय किया, शिव त्रिपुरारी बने। उधर के खजूर और ताड़ के वृक्षों को संस्मरण के रूप में विजय का प्रतीक बनाया गया। नाग और वाकाटक कला में ये प्रतीक देखने को मिलते हैं।

वास्तु और स्थापत्य शिल्प की सबसे सुंदर रचना मंदिर स्थापत्य है। देवलोक स्वर्ग की स्मृतियों को संजोने के उद्देश्य से ही हमारे पूर्वजों ने मंदिर निर्माण में स्वर्ग की सभी विशेषताओं को स्थान दिया। विभिन्न स्थानों में पशु पक्षी, पुष्पलता, पौराणिक दृश्यों और लोक कथाओं का प्रदर्शन कर वास्तव में सामाजिक जीवन का साकार रूप चित्रित किया है। अप्सराओं, तरुणियों और कामोत्तेजक प्रसंगों के द्वारा दुष्टों के आसुरी कर्मों को बतलाया है। भक्तों के सामने देवताओं के प्रणय चरित्र का चित्रण मनुष्य को आध्यात्मिकता की ओर ले जाता है। यहाँ मंदिर का स्थापत्य और शिल्प मन में धार्मिक भावना का संचार करते हैं।

0: इस बात को पूरी तरह स्थापित किया गया कि भगवान के पूजन से ही जीवन में पवित्र स्रोत मिलेगा, संसार में धर्म की प्रधानता होगी। शिल्पकारों में आत्मत्याग की इतनी भावना थी कि कहीं भी उन्होंने अपने नाम का उल्लेख तक नहीं किया, और ये कलाकृतियां अनाम अज्ञात शिल्पकारों की धरोहर बनकर रह गए।
1: वाह, कितनी ऊंची भावना छिपी है इनके निर्माण के पीछे। हमारा देश प्राचीन है, दुनिया के समुन्नत देशों से पहले बहुत आगे था। यहाँ की मान्य परंपराएं भी बहुत प्राचीन हैं। धर्मशास्त्रकारों का ऐसा मानना है कि पूर्व काल में मंदिर निर्माण के पीछे इस सांस्कृतिक आध्यात्मिक भावना के अलावा इनका व्यवहारिक महत्व भी था।
0: ये सच है, पुराने जमाने में मंदिर महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों के रूप में भी काम करते थे। वे जनता की धार्मिक जिज्ञासा के पूर्ण समाधाता थे। मंदिर के पुजारी शास्त्रज्ञ धर्मनिष्ठ और ज्योतिर्विद हुआ करते थे। पुराणों के परायण, कथा वार्ता, भजन कीर्तन, प्रवचन और पाठ की दैनिक व्यवस्था थी। जिज्ञासु धार्मिक जनता मंदिरों में जाकर कथा सुनती, भजन कीर्तन में भाग लेकर देवता की भक्ति में आत्म विभोर होकर अपने आप को कृत कृत्य करती थी।

0: वास्तव में मंदिर नगर की शिक्षा दीक्षा धर्म और भक्ति योग और वैराग्य के जीते जागते केंद्र थे। नगर के जिज्ञासु विद्यार्थी विद्वान पुजारियों के अंतेव्यापी बनकर वेद शास्त्र पुराण और काव्य का अध्ययन करते थे। उत्सव विशेष पर न केवल नगर वरन उस जनपद विशेष की ग्रामीण जनता आती, महोत्सव में भाग लेती और आनंद मनाती थी। वास्तव में मंदिर व्यवहारिक हिंदू जीवन के अभिन्न अंग थे।
1: कितना ऊंचा जीवन दर्शन आत्मसात किए हैं ये मंदिर। इन मंदिरों के उद्भव विकास और देवताओं के बारे में क्या कोई साहित्यिक प्रमाण मिलता है? कितना प्राचीन है मंदिर वास्तुकला के सृजन का इतिहास?
0: देश में मंदिर निर्माण का प्रारंभ किस स्थान से हुआ और कब हुआ ये बता पाना कठिन है। अब तक की पुरातात्विक खुदाइयों में मंदिर के भग्नावशेष, नगरों के खंडहर, विभिन्न वस्तुएं और तमाम वह पुरा संपदा जो युगों युगों पूर्व समाज जीवन में आवश्यक रूप से इस्तेमाल की जाती थी, उन तमाम पुरा वस्तुओं का परीक्षण करने के उपरांत जो तथ्य प्रकाश में आए, उनसे ज्ञात होता है कि ईसा पूर्व चौथी शताब्दी से मंदिरों के विधिवत निर्माण का युग प्रारंभ हो चुका था। प्राचीन वैदिक साहित्य से पता चलता है कि वैदिक युग में प्रकृति देवों की पूजा का विधान था। यजुर्वेद में रुद्र का वर्णन आता है, वहां उन्हें प्रकृति, वनस्पति, पशुओं के देवता के रूप में प्रतिष्ठित किया गया, विष्णु यज्ञ के देवता माने गए। वैदिक युग में यज्ञ संस्था का विकास होने से विष्णु की एकता यज्ञ में स्थिर कर उन्हें समस्त देवताओं में श्रेष्ठ माना गया।
2: यज्ञो वै विष्णु विष्णु परमः तदंतरेण सर्वा अन्या देवता।
1: वेदों से ज्ञात होता है कि वैदिक काल से ही मंदिरों का निर्माण देवालय के रूप में होने लगा था। देव पूजा के लिए इष्ट देवों के स्थान निश्चित थे, जिन्हें देवस्थान, देवायतन, देवालय कहा जाता था। महाभारत रामायण काल के आते तक वास्तुकला के विकास के साथ ही देवालय मंदिर के रूप में परिवर्तित हो गए। महाभारत सभा पर्व में उल्लेख मिलता है कि उस समय की वास्तुकला उच्च कोटि की थी।
2: यस्तु प्रासाद मुख्योत्र विहितः

0: सर्वशितिपमिः अतीवरम्यः सोऽप्यत्र प्रसन्नः तिष्ठति।
1: रामायण महाकाव्य में भी मंदिरों और देवी देवताओं की पूजा का उल्लेख मिलता है। वास्तव में मंदिर युगों युगों से मानव की असीम आकांक्षा की प्रतिपूर्ति हेतु श्रद्धा और विश्वास के केंद्र बिंदु हैं।
2: वास्तव में कितना प्राचीन है मंदिर वास्तुकला के सृजन का प्राचीन

चलिए भ्रमण करते हैं शालदीप के नाम से विख्यात बस्तर की पावन धरती की, जो अपने गर्भ में अनेकों ऐतिहासिक और पुरातात्विक रहस्यों को संजोए हुए है। महाकाव्य काल में दंडकारण्य, मौर्य काल में आटविक राज्य, गुप्त काल में महाकांतार, छिंदक युग में चक्रकोट और काकतीय युग में बस्तर नामा विधान से विभूषित यह स्थान युगों पूर्व भारत के विभिन्न क्षेत्रों में पुष्पित और पल्लवित मंदिर स्थापत्य कला के विभिन्न स्वरूपों को समेटे हुए जीवंत है।

0: ओ सियान जरा सुनिए।
1: ओ
0: क्या नाम है इस गांव का?
1: गोर्धनोरा आए।
2: हमने सुना है इस गांव में बहुत पुराने मंदिर और मूर्तियां हैं। क्या हम लोगों को उनके बारे में बताओगे? गांव के लोग इन जगहों के बारे में क्या कहते हैं?
1: ए जनाब, वो देखो दूर दूर तक ये पुरानी जगह दिखाई देती है। इनको कौन लोग आकर बनाए ये हमको नहीं मालूम। गांव के सियान बताते हैं कि उनके दादा परदादा के पहले से ये टीला बने थे। कुछ बरस पहले तक हम लोग गांव के सभी जन इन सब जगहों से डरते थे। कुछ लोग इनको टीला, कुछ डोंगरी और कुछ लोग इनको राजा के घर बताते थे। यहाँ खजाना भी गड़ा होने की बात बताते थे और छुप कर कुछ लोग खोदते भी थे।
0: क्या किसी को यहाँ से कुछ मिला?
1: अब किसी को कुछ मिला कि नहीं ये हमको नहीं मालूम। कहते हैं यहाँ देव रहते हैं जो ले जाने नहीं देते।
2: अब आप लोग इनको क्या मानते हो? ये टीले तो अब खोद डाले गए हैं, किसने इनकी खुदाई करवाई?
1: हाँ, 14 बरस पहले कुछ सरकारी साहब लोग आए थे, कई महीना गांव में रुके और टीलों को खोदवाया। उन लोगों ने हमको बताया था कि ये टीला कई हजार साल पुराने मंदिर हैं। खोदने के बाद यहाँ देव रहने की बात सच निकली। इनके बारे में उस व्यक्ति से पूछिए, वो इनकी रखवाली और साफ सफाई करता है।
0: अच्छा अच्छा, क्यों भाई, क्या तुम इन मंदिरों के इतिहास और पुरातत्व के बारे में हमें बता सकते हो?
3: अवश्य। गढ़धनुरा के इन प्राचीन टीलों की खुदाई सरकार ने जब कराई तो पुरातत्व विशेषज्ञ आश्चर्यचकित रह गए। उनका कहना है कि गुप्तकाल में जिस परिष्कृत मंदिर स्थापत्य शिल्प का विकास हुआ उसकी गमक सुरुचिपूर्ण कलावशेषों के रूप में गढ़धनुरा ग्राम में अवस्थित मंदिरों के भग्नावशेषों से होती है। लगभग 1500 वर्ष पूर्व महाकांतार के नाम से विख्यात इस अंचल में नल राजवंश का आधिपत्य था। उस समय गढ़धनुरा एक आध्यात्मिक केंद्र के रूप में विख्यात था। यहाँ 22 टीलों के उत्खनन से

त्रिरथ शैली में बने मंदिरों में कुछ समतल भूमि में और कुछ ऊंची वेदिका पीठ पर बने हुए हैं। इनमें गर्भगृह और आयताकार मंडप हैं।

0: प्राचीन मंदिरों की एक जगह एक साथ इतनी बड़ी श्रृंखला को देखकर पुरावैज्ञानिक ये मानते हैं कि ये जगह उस समय एक धार्मिक तीर्थ स्थल थी।
1: गढ़ धनोरा से कुछ दूर जंगली मार्गों से होकर जाने पर भोंगापाल नाम का गांव मिलेगा। यहाँ के जंगल में भी कुछ प्राचीन टीले थे जो गढ़ धनोरा से भी पुराने हैं। यहाँ की भी सरकार ने खुदाई कराई है। आइए चले देखते हैं उस जगह को जो बौद्ध धर्म और ब्राह्मण धर्म के समन्वयन का

0: ए सियान,
1: हाँ
0: जरा सुनो, चलो हमें मुदियाल कुटुम ले चलो।
2: हाँ साहेब।
3: कितना विशाल सुरक्षित वन क्षेत्र है, क्या इसके भीतर है वाटिले?
2: हाँ जनाब।
0: क्यों सियान, यहाँ के लोग इसे मुदियाल कुटुम क्यों कहते हैं?
2: आप साहब, ये यहाँ के बोली में मुदिया का मतलब होता है बूढ़ा और कुटुम का मतलब होता है जंगल, इसीलिए यहाँ के लोग इसको बूढ़े का जंगल बोलते हैं साहब। ओ देखिए साहब, ओ दे ओ देखो, पुराना मंदिर और देवगुड़ी और खूब मूर्ति मने वहाँ।
3: वाकई कितनी सुंदर रमणीक जगह है, नदी नालों से घिरा क्षेत्र, ध्यान योग और वैराग्य की छवि यहाँ के वातावरण में आज भी दृष्टिगोचर हो रही है। क्यों भाई गाइड जी, क्या कहते हैं इस जगह के बारे में पूरा वैज्ञानिक?
4: पूरा वैज्ञानिकों का मानना है कि 5वीं शताब्दी ईस्वी सन में निर्मित ये प्राचीन मंदिर बस्तर में नलवंशी राजाओं के राजत्व काल में बनाए गए थे। नल शासक शैव मतावलंबी और धार्मिक रूप से सहिष्णु थे। गढ़धनोरा के साथ ही इन टीलों का उत्खनन सरकार ने करवाया और यहाँ से इन टीलों में ये विशाल बौद्धों का चैत्य मंदिर त्रिरथ शैली में शैव और शाक्त मंदिर प्रकाश में आए, जो वास्तुशिल्प की बेजोड़ कृतियां हैं। बौद्ध और ब्राह्मण धर्म के समन्वय का ये केंद्र हिंदू देवताओं शिव शक्ति की स्तुतियों के अलावा बौद्धों की उपासना स्तुतियों से गुंजित था।

0: कितनी ऊंची टेकरी पर बना है यह चैत्य मंदिर। अद्भुत है इस चैत्य मंदिर का वास्तु विन्यास।
1: घोड़े की नालनुमा ईंट निर्मित ये चैत्य मंदिर छत्तीसगढ़ में पहले और संपूर्ण भारत में चौथे क्रम में आता है। चारों ओर खुला प्रदक्षिणा पथ है। बाहरी भाग की ओर छोटे छोटे कई कमरे बने हैं। यहाँ बौद्ध भिक्षुक निवास करते थे। पथिक भिक्षुक आकर विश्राम करते थे। हजारों वर्षों पूर्व इन्हीं जगहों में रहकर भिक्षुओं ने तप त्याग और साधना का दीप अलौकिक किया था। यहाँ स्थित गौतम बुद्ध की 5 फुट ऊंची गुप्तकालीन प्रतिमा बहुत अद्भुत है और ये सप्त मातृका मंदिर के सामने रखी मातृका प्रतिमा बस्तर की मूर्ति कला की सबसे प्राचीन कृतियां हैं।
0: वाह कितनी अद्भुत कला निधि है। आइए चले लोहड़ीगुड़ा के निकट इंद्रावती और नारंगी नदी संगम को पार कर हम नारायणपाल। इस ग्राम के विशाल मंदिर प्रांगण में जहां एक ऐसी अद्वितीय मंदिर कला को देखेंगे जो बस्तर के सुरक्षित मंदिरों में बेजोड़ कृति है। मंदिर के इतिहास और वास्तुशिल्प के बारे में पुरातत्व वेता कहते हैं,
2: नाग शासक जगदीश भूषण की पत्नी परम शिव भक्त ने महारानी गुंड महादेवी ने इस मंदिर का निर्माण 1111 ईस्वी सन में करवाया। बस्तर में सुरक्षित अब तक के सभी मंदिरों का ये सिरमौर माना जाता है। एक विशाल चतुष्कोणीय चौड़ी प्रस्तर वेदिका पर चालुक्य शैली में बना ये मंदिर सप्त रथ युक्त है। विशाल प्रस्तर खंडों को काट तराश कर मंदिर का निर्माण किया गया है। सीढ़ियां मंडप अंतराल और गर्भगृह जिसके ऊपर लगभग 60 फुट ऊंचा विमान मंदिर को भव्यता प्रदान करता है। मंदिर के बाहरी ओर प्रस्तर खंडों पर उकेरी कारीगरी मूर्तियों के लिए बनी भित्तियां मंदिर वास्तुकला के जीवंत स्वरूप का दिग्दर्शन करा रही हैं।

0: बालसुर नगरी वही है जिसे लोग परम शिव भक्त वाणासुर की बतलाते हैं। आइए पुरातत्व वेत्ता से इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं।
1: यहाँ से मिले शिलालेखों, मूर्तियों, मंदिर वास्तुकला के अध्ययन से ये विदित होता है कि आज से लगभग 1000 वर्ष पूर्व छिंदक नाग राजाओं ने इस पुर को अपनी राजधानी बनाया था। यहाँ फैले ऐतिहासिक खंडहर, अस्तित्व रक्षा में संघर्षरत देवालय, मूर्तियां और समुद्राकार तालाब जनमानस में जिज्ञासा और कौतूहल का केंद्र बिंदु हैं। यहाँ के मंदिरों में स्थापत्य शिल्प की विविध शैलियों के नीरव दर्शन होते हैं। इन कला विधियों को उत्तरापथ, दक्षिणापथ और उत्कल देश के कुशल शिल्पियों ने उकेर कर अपनी कला का प्रदर्शन कर ख्याति अर्जित की थी।

0: ये वाद्य यंत्रों की सुमधुर ध्वनि कहां से आ रही है? चलो देखें। वाह, खेत खलिहानों और पेड़ों की झुरमुट से लगा इस पुर का सर्वाधिक सुरक्षित विशाल विमान युक्त मंदिर है, जो काल के क्रूर हाथों से अतीत के वैभवशाली इतिहास को संजोई शांत चित्त स्थिर है। उन अनाम शिल्पियों की अद्भुत कारीगरी, कड़ी मेहनत के पसीने से सराबोर देवायतन मंदिर किस देवता का है और इसे लोग क्या कहते हैं?
1: ये शिव मंदिर है, स्थानीय जनता इसे मामा भाचा गुड़ी कहते हैं। ओ सियान भाई, जरा इधर आना। इस गुड़ी को आप लोग क्या कहते हो?
2: ये गुड़ी को हम लोग मामा भाचा गुड़ी बोलते हैं साहब।
1: क्यों कहते हैं इसे मामा भाचा गुड़ी?
2: ये तो हमको पता नहीं है साहब। वो सियान मन बताते हैं कि एक राजा का भांजा खूब बुद्धिमान था। अच्छा। और उत्कल देश से कारीगर को बुला करके ये मंदिर को बनाने लगा। इतना सुंदर मंदिर को देखकर राजा को भी जलन हुआ, लड़ाई झगड़ा हुआ। भांजा ने मामा को मारकर इस मंदिर को पूरा किया और उसके सिर के आकार का पत्थर का सिर बनाकर मंदिर के ऊपर रख दिया। ओ देखिए साहब, वो ऊपर वो सिर दिखाई देता है।
0: विचित्र किम दंती है। आइए जाने पुरातत्व के जानकार इस मंदिर स्थापत्य पर क्या प्रकाश डालते हैं।
3: मामा भाजा मंदिर का वास्तु विन्यास नागर शिल्प कला का प्रतिनिधित्व करता है। ये कला उत्तर भारतीय नगरों में जन्मी और संपूर्ण भारत में इसका फैलाव हुआ। इस मंदिर के स्थापत्य शिल्प में उड़ीसा शैली की भी झलक देखने को मिलती है। मंदिर का स्थापत्य वास्तु विन्यास पंचरथ युक्त है।

0: कितनी सुंदर शिल्प रचना है इन मंदिरों में। इन्हें देख मन सहज ही प्रश्न कर उठता है, इन कला निधियों के दीर्घायु होने का क्या रहस्य है?
1: स्थापत्यों ने मंदिर वास्तुशिल्प का सृजन परंपरागत नीतियों का अनुसरण और अनुसंधान करके किया। मंदिर निर्माण करते समय पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को विवेकपूर्ण ढंग से समायोजित किया गया। स्थापत्य कला में महत्व दिया गया कि भार का वहन लंबवत होता है और प्रस्तर पर प्रस्तर रखने से निर्माण कार्य सुगम हो जाता है। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव को केंद्रित करके बनाए गए इन मंदिरों की आयु हजारों वर्ष बीतने के बाद भी आगे कई वर्षों तक और जीवंत स्थिर रहने में समर्थ है।
0: यह मंदिर 32वां मंदिर है। 32 खंभों पर अवलंबित होने के कारण ही इसका यह नामकरण हुआ। इस मंदिर के बारे में प्रचलित जनश्रुति है कि इसके खंभों के नीचे खजाना दबा है। कहते हैं 11वीं शताब्दी में यह मंदिर छिंदक नागराजाओं का कुशालय था। संपूर्ण मंदिर एक चतुष्कोणी वेदिका पर निर्मित है। मंदिर की लंबाई चौड़ाई 25 मीटर है। वेदिका पर दो पृथक पृथक मंदिर बने हैं। सामने के भाग से 16-16 खंभों को जोड़कर 32 खंभों से जुड़ा महामंडप है। दोनों मंदिरों के गर्भगृह के बीच 5 फुट चौड़ा खुला स्थल है जो प्रदक्षिण पथ के लिए प्रयुक्त होता है। गर्भगृह के सामने

अलंकृत और अद्भुत कारीगरी की प्रतीक नंदी प्रतिमाएं हैं। दोनों मंदिरों के गर्भगृह में एक जैसी जलहरी जो तीन खंड में एक धुरी पर स्थापित है। जलहरी के ऊपर का भाग घुमाने पर मध्य भाग स्वमेव घूमने लगता है। यह दोनों जलहरियां किसी तिलिस्म की तरह प्रतीत होती हैं।

0: कितना आनंददायक है वाद्य यंत्रों का यह कोलाहल। नगाड़े की घनघनाहट, तुरही की तर्जन, शंख और घंटों के बीच में देवी उपासना मंत्रों की गुंजन से वातावरण आध्यात्मिक आनंद से परिपूर्ण है। ये है काकती राजाओं की इष्ट देवी दंतेवाड़ा स्थित माई दंतेश्वरी का मंदिर। आधुनिक मंदिरों में सिरमौर क्षेत्रीय जनता की अगाध श्रद्धा, भक्ति और विश्वास का केंद्र बिंदु।
1: 15वीं शताब्दी ईस्वी सन के आसपास काकतीय नरेशों ने आंध्र प्रदेश के वारंगल क्षेत्र से आकर बस्तर में काकतीय राजवंश की नींव डाली। माई दंतेश्वरी इन राजाओं की इष्ट देवी थी। यहाँ के मंदिर का निर्माण काकतीय राजाओं ने किया। मंदिर के भीतर रखी सैकड़ों प्रतिमाओं को बारसुर से उठाकर यहाँ लाकर रखा गया। राजाओं के साथ साथ बस्तर की आम जनता की असीम श्रद्धा माई दंतेश्वरी देवी के साथ जुड़ी हुई है। माई दंतेश्वरी वास्तव में दुर्गा का ही रूप है। ऐतिहासिक और पुरातात्विक दृष्टि से मंदिर उतना प्राचीन नहीं है, लेकिन इस स्थल से पौराणिक दंतकथा जुड़ी है। कहा जाता है कि इस स्थल पर शक्ति का एक दांत गिरा था। इसी मान्यता के आधार पर यह दांत का क्षेत्र दंतेवाड़ा और प्रतिष्ठित देवी माई दंतेश्वरी कहलाई।

0: बस्तर अनादिकाल से आध्यात्म की कर्मभूमि रहा है। युगों युगों पुराने कलावशेषों को अपने में समेटे युगांतकारी उन्नति और पतन के रहस्यों के ये साक्षी मंदिर अपने कला वैभव को खोते जा रहे हैं। इन मंदिरों की सुरक्षा हमारा सामाजिक दायित्व है। वैदिक मान्यता है कि मंदिर निर्माण कर कुओं तालाबों को बनवाने से मोक्ष की प्राप्ति होती है।
1: प्राचीन काल में राजा सामंत धनिक श्रेष्ठी अपने वंश कीर्ति की श्री वृद्धि हेतु इनका निर्माण करवाते थे। उन्हें स्वर्ग मिला कि नहीं ये अलग बात है, लेकिन इतना अवश्य है कि इन कृतियों का निर्माण करवाकर बस्तर के वास्तु और स्थापत्य शिल्प में उन्होंने अमरत्व प्राप्त कर लिया है।

की वास्तु और स्थापत्य शिल्प। अभी आपने रोजी रानी तिवारी का लिखा ये रूपक सुना। वाचक स्वर था संजय त्रिवेदी और सरबजीत कौर का। अन्य स्वर थे महेंद्र पांडे, दिनेश पानीग्राही और के परेश के। प्रस्तुति सहायक थे जे एस राव और इस रूपक के प्रस्तुतकर्ता थे के परेश। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर हम आकाशवाणी के जगदलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 9:30 हुए हैं। अब पेश है कार्यक्रम एक ही फिल्म से, जिसमें आज हम लेकर आए हैं हिंदी सिनेमा की एक ऐसी सदाबहार फिल्म जिसने प्रकृति की

सुंदरता, प्रेम की पवित्रता और मानवीय संवेदनाओं को बड़े ही मार्मिक ढंग से पर्दे पर उतारा। 1965 की वो फिल्म है हिमालय की गोद में। सुनिए फिल्म का पहला गीत, आवाज है मुकेश की, बोल है आनंद बख्शी के।

हिमालय की गोद में इस फिल्म के निर्माता है शंकर भाई भट्ट, जिन्हें इस फिल्म के लिए प्राप्त हुआ सर्वश्रेष्ठ फिल्म का फिल्मफेयर पुरस्कार। फिल्म के निर्देशक हैं विजय भट्ट। फिल्म की कहानी, पटकथा और संवाद लिखे वीरेंद्र सिन्हा ने। फिल्म के तीन गीतकारों ने गीत लिखे हैं, आनंद बख्शी, इंदिवर और कमर जलालाबादी। मधुर संगीत दिया कल्याण जी, आनंद जी ने। आइए अब सुनते हैं इंदिवर की शब्द रचना, स्वर है लता मंगेशकर का।

हिमालय की गोद में इस फिल्म में मुख्य कलाकार रहे मनोज कुमार, सुनील बेहरा की भूमिका में माला सिन्हा फुलवा के किरदार को निभाती नजर आई, शशिकला बनी नीता, सुनील की मां की भूमिका निभाई अचला सचदेव ने, दयाल के रूप में नजर आए डेविड अब्राहम जिन्होंने फुलवा को बेटी की तरह पाला। हिमालय की गोद में इस फिल्म में कुल 6 गीत हैं, जिन्हें अपनी आवाज दी लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी, मुकेश और उषा तिबोथी ने।

फिल्म की कहानी एक युवा डॉक्टर सुनील बेहरा यानी मनोज कुमार की है, जो शहर की आधुनिक जीवन शैली छोड़कर पहाड़ों के दूरस्थ गांवों में लोगों की सेवा करने का संकल्प लेता है। वहां उसकी मुलाकात होती है भोली भाली फुलवा यानी बाला सिन्हा से। धीरे धीरे फुलवा और सुनील के बीच की दूरियां मिटने लगती हैं और दोनों एक दूसरे को चाहने लगते हैं।

पुलवा और सुनील के प्यार के रास्ते में कई सामाजिक रूढ़ियां, अंधविश्वास और परिस्थितियां कई परेशानियां खड़ी कर देती हैं।

इस फिल्म की मनमोहक लोकेशन इसकी सबसे बड़ी खासियत है। हिमालय की गोद, हिमालय की वादियों में फिल्माए गए दृश्य दर्शकों को प्रकृति के अत्यंत निकट ले जाते हैं। यही कारण है कि ये फिल्म आज भी उतनी ही ताजगी का एहसास कराती है जितना अपने प्रदर्शन के समय कराती थी। सुनते हैं फिल्म का अंतिम गीत, जिसे लिखा है आनंद बख्शी ने, आवाज लता मंगेशकर और साथियों की है।

0: एक ही फिल्म से कार्यक्रम में अभी आपने सुने हिमालय की गोद में इस फिल्म के नगमे और फिल्म से जुड़ी बातें। ये आकाशवाणी जगदलपुर है। सुबह के 9:55 होने वाले हैं। अब प्रादेशिक समाचार हम आकाशवाणी रायपुर से रिले कर रहे हैं।
1: ये आकाशवाणी रायपुर है। अब आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
2: ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं राहुल सिन्हा।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में 65 पुरस्कार प्रदान करेंगे। इनमें छत्तीसगढ़ की बुधरी ताती भी शामिल है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आज होगी राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस पर आज नया रायपुर के ग्राम पलौद में वृक्षारोपण अभियान आयोजित किया जाएगा। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस दौरान दो पद्म विभूषण

7 पद्म भूषण और 56 पद्मश्री सहित कुल 65 पद्म अलंकरण दिए जाएंगे। इनमें छत्तीसगढ़ की बुधरी ताती भी शामिल है। इसके अलावा सुविख्यात टेनिस खिलाड़ी विजय अमृतराज, अभिनेता ममूटी, पार्श्व गायिका अलका याग्निक और क्रिकेट खिलाड़ी रोहित शर्मा को भी पद्म पुरस्कार दिए जाएंगे। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर सरकार ने वर्ष 2026 के लिए 5 पद्म विभूषण सहित 131 पद्म अलंकरणों की घोषणा की थी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में राज्य मंत्री परिषद की बैठक आज सुबह 11:30 बजे नवा रायपुर अटल नगर स्थित मंत्रालय में होगी। इसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाएंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कल राजनांदगांव में आयोजित प्रगतिशील किसान सम्मेलन में 510 करोड़ रुपए की लागत के 300 से अधिक विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राजनांदगांव जिले में जल संरक्षण और फसल चक्र परिवर्तन के क्षेत्र में सराहनीय कार्य हुआ है। उन्होंने किसानों से आधुनिक खेती तकनीकों को अपनाने और धान के साथ अन्य फसलों की खेती बढ़ाने की अपील की। कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष डॉ रमन सिंह भी मौजूद थे। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस के अवसर पर आज राजधानी रायपुर में खेल और पर्यावरण संरक्षण को जोड़ते हुए वृक्षारोपण अभियान आयोजित किया जाएगा। नया रायपुर के ग्राम पलौद में छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ और वन विभाग के संयुक्त तत्वावधान में यह कार्यक्रम होगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मुख्य अतिथि के रूप में इसमें शामिल होंगे। इस दौरान 2036 पौधों के रोपण का लक्ष्य रखा गया है। अभियान के माध्यम से खिलाड़ियों और युवाओं को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक किया जाएगा। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ नैफेड के नीलामी पोर्टल का शुभारंभ करेंगे। यह पोर्टल नीलामी प्रक्रिया में पारदर्शिता, दक्षता और सुगम संचालन को मजबूत बनाने के लिए तैयार किया गया है। छत्तीसगढ़ सरकार ने जिला सहकारी केंद्रीय बैंक अंबिकापुर के कुछ समितियों में वित्तीय अनियमितताओं के मामले में कड़ी कार्रवाई की है। इसके बाद शंकरगढ़, कुसमी, रामानुजगंज और रामचंद्रपुर क्षेत्र के प्रभावित किसानों को अब फिर से खाद और बीज मिलना शुरू हो गया है। मामले में दोषी अधिकारियों कर्मचारियों पर FIR, निलंबन और विभागीय कार्रवाई की गई है। करीब 497 किसानों की शिकायतों में 30,51,00,000 रूपये से अधिक की अनियमितता सामने आई है। कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने कहा कि किसानों के हितों से खिलवाड़ करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। आज स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव संभागीय और जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक लेंगे। बैठक में अधिकारियों की उपस्थिति अनिवार्य होगी। किसी भी प्रतिनिधि को मान्यता नहीं दी जाएगी। बैठक में प्रदेश के स्कूलों में व्यवस्थाओं और शैक्षणिक तैयारियों की समीक्षा की जाएगी। इस दौरान किताब, यूनिफॉर्म और साइकिल वितरण की स्थिति पर भी चर्चा के साथ ही VSK ऐप के माध्यम से शिक्षकों की ऑनलाइन उपस्थिति पर भी चर्चा होगी। और अब कुछ समाचार संक्षेप में। अंबिकापुर में हजरत निजामुद्दीन के बीच चलने वाले एक्सप्रेस ट्रेन की आवृत्ति बढ़ाकर साप्ताहिक से द्विसाप्ताहिक कर दी गई है। छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल द्वारा छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में डाटा एंट्री ऑपरेटर के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए 28 जून को प्रथम चरण परीक्षा आयोजित की जाएगी। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI के रायपुर कार्यालय में नए क्षेत्रीय अधिकारी आलोक कुमार कल पदभार ग्रहण करेंगे। दुर्ग में कुरियर सेवाओं के माध्यम से नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी रोकने के लिए पुलिस और खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने कुरियर संचालकों की बैठक की और अधिकारियों ने सभी पार्सलों की सख्त जांच और बुकिंग प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के निर्देश दिए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में 65 पुरस्कार प्रदान करेगी। इनमें छत्तीसगढ़ की बुधरी ताती भी शामिल है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आज होगी राज्य मंत्री परिषद की बैठक। और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस पर आज नया रायपुर के ग्राम पलौद में वृक्षारोपण अभियान आयोजित किया जाएगा। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन 11:55 पर

0: ये आकाशवाणी रायपुर है। अगला कार्यक्रम कुछ ही पलों में होगा। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर हम आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्र से बोल रहे हैं। 10 बजे हैं। अगला कार्यक्रम कुछ ही पलों में होगा। ये आकाशवाणी रायपुर है। लीजिए प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम उजाले की ओर।
1: इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हैं छत्तीसगढ़ संवाद।

0: छत्तीसगढ़ धान का कटोरा तो है ही, साथ ही ये है बेमिसाल प्राकृतिक सौंदर्य का गढ़ भी। प्रकृति यहाँ लहलहाती है, बलखाती है और है मुस्कुराती। यहीं का एक बेहद खूबसूरत इलाका है बस्तर। कभी बस्तर दुर्गम घाटियों और घने जंगलों की आदिम बस्तियों के लिए जाना जाता था, लेकिन अब बस्तर जाना जाता है चहुमुखी विकास के लिए। बस्तर के जनजातीय क्षेत्रों में अब विकास की रोशनी पहुंच चुकी है। यहाँ के दूर दराज के इलाके भी अब पहुंच मार्गों से जुड़ चुके हैं। गांवों, टोलों और मजरों तक शिक्षा की अलख जग चुकी है। युवाओं के लिए तकनीकी शिक्षा का तेजी के साथ विस्तार हो रहा है। बेरोजगारों के लिए स्वावलंबन के नए नए द्वार खुल रहे हैं। बस्तर खेलों में भी सबसे आगे है। खेलो इंडिया के राष्ट्रीय खेल आयोजन में यहाँ के खिलाड़ियों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और अपने दमखम से सबको आश्चर्यचकित कर दिया। यही तो है बस्तर के विकास की एक साफ तस्वीर
1: कि नक्सलवाद समाप्त होने के बाद बस्तर क्षेत्र का ये पहला प्रवास है और वो भी सुकमा की धरती से शुरू किए हैं। और इसके पहले भी हम कई बार सुकमा आए हैं, लेकिन आज जो इतनी गर्मी के बाद इतनी संख्या में लोग आए हैं, इस बात का प्रमाण है कि सबको विकास पर भरोसा है, देश के संविधान पर भरोसा है। और आज हम पूरे बस्तर और छत्तीसगढ़ की जनता की तरफ से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का, माननीय गृह मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहेंगे। उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण आज नक्सलवाद छत्तीसगढ़ से समाप्त हो पाया है और ये क्षेत्र जो 40 वर्षों से भी ज्यादा समय तक विकास से वंचित रहा, नियत निलानार योजना के माध्यम से हम लोग विकास पहुंचाए हैं, लेकिन अब माननीय गृह मंत्री जी ने आश्वस्त किया है कि इस संभाग को देश का सबसे अच्छा आदिवासी संभाग बनाएंगे, विकास यहां पर पहुंचाएंगे, वो काम हम लोग करने वाले हैं। यहां पर 308 करोड़ के विकास कामों का सौगात सुकमा जिले को मिला है, उसके लिए भी सुकमा जिले के लोगों को बहुत बहुत बधाई शुभकामना।

पहले बस्तर की वादियों में एक डरी सहमी सी आहट गूंजा करती थी, लेकिन अब उसकी जगह साहस और भरोसे के गीत गाए जा रहे हैं। बच्चे हंसते खेलते अपने ही गाँव में अच्छी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। गाँव के ही पढ़े लिखे युवक युवतियाँ उनके अच्छे शिक्षा दूत जो बन गए हैं। दशकों तक उग्रवाद की गिरफ्त में रहे बस्तर के युवा अब गुमराह नहीं होते, क्योंकि वे समझ चुके हैं लोकतंत्र की शक्ति को। नियत मिलनार योजना ने यही काम तो किया है।

0: इस बारे में नारायणपुर की जिला पंचायत सीईओ आकांक्षा खलखो ने बताया।
1: बस्तर संभाग के प्रभावित क्षेत्र में स्थापित जो नए कैंप स्थापित हो रहे हैं उनकी 10 किलोमीटर के परिधि पे हम मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं। इसको नियत निलंबन योजना मूल रूप से इसको कहा गया। इसका मूल उद्देश्य ये था कि शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं को 100% लाभ हम लोगों तक पहुंचा सके। इस योजना में इनिशियली जो 1.0 जो जिसको कह सकते हैं वो 5 जिले शामिल थे, कांकेर, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, बीजापुर और सुकमा। 2.0 जो नियत निलंबन 2.0 नियत निलंबन 1.0 का विस्तार करते हुए शासन लाना चाह रही है। ये इसको 10 जिलों में टोटल शासन लेकर के आ रही है, बीजापुर, बस्तर, दंतेवाड़ा, कांकेर, नारायणपुर, कोंडागांव, सुकमा, गरियाबंद, मोला मानपुर और खेरागढ़ छुईखदान। इसके अंतर्गत भी जितने गांव हमारे पूरे जिले में हैं उन सभी को हमको टारगेट करना है और वहां तक हमको शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं को पहुंचाकर उनको सैचुरेट करना है। इसमें जो है सभी ऑलमोस्ट सभी विभाग इसमें शामिल हैं। पंचायत ग्रामीण विकास हो गया, पीएचई हो गया, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति हो गया, क्रीड़ा, विद्युत, स्कूल शिक्षा, स्वास्थ्य, इस तरीके से सभी ऑलमोस्ट सभी विभाग इसमें शामिल हैं। जितने भी लोग शासन की योजनाओं से वंचित थे उनको हम लोग टारगेट कर रहे हैं। मूलभूत सुविधा जैसे सड़क, पानी, बिजली आदि से गाँव का संपर्क स्थापित किया जा रहा है। जो भी नियत निलंबन योजना में नक्सल पीड़ित रहे उनका कॉन्फिडेंस बिल्डिंग हम लोग इस प्रकार से हम लोग कर रहे हैं और जन जागरूकता से हम शासन की विकासकारी योजनाओं को हम पहुंचा रहे हैं। नियत निलंबन योजना जो 1.0 थी उसके अंतर्गत काफी काम हुआ है। रोड कनेक्टिविटी बढ़ी है, विद्युत लाइन बहुत सारे गाँव में पहली बार गई है। पीडीएस हम अब ट्रैक्टर के माध्यम से अंदर अंदरूनी गांव में हम पहुंचा पा रहे हैं। हैंडपंप खनन काफी नए नए गांव में हुआ है। हितग्राही मूलक शासन की विभिन्न योजनाओं को भी हम सीधे अब जो है वो पहुंचा पा रहे हैं। शुरू में जो है 1.0 में सिर्फ 5 जिले थे, अब 10 जिले हो गए। रोड कनेक्टिविटी इसमें प्राइमरी जो पहला फोकस रहता है वो रोड कनेक्टिविटी का रहता है, क्योंकि अगर हम पहुंच ही नहीं पाएंगे, रोड से कनेक्टेड नहीं रहेगी तो वो गांव हमेशा कट ऑफ रहेगा। तो सबसे पहले हमारी प्राथमिकता रहती है कि हम उन गांवों को मेन स्ट्रीम से या मेन जो कम्युनिकेशन चैनल्स हैं उनसे जोड़ पाए। रोड कनेक्टिविटी, टावर हो गया, विद्युत लाइन भी हमारे नारायणपुर में काफी गांव में पहली बार विद्युतीकरण हुआ है। पहले बार जैसे मछपुर हो गया, गारपा हो गया, पहली बार यहाँ पे विद्युत लाइन गई है। अंदर अंदर के ओरछा ब्लॉक के अंदर के गाँव जो थे पहले राशन लेने के लिए ओरछा ब्लॉक मुख्यालय में आते थे, अब हम वहाँ पे ट्रैक्टर के माध्यम से गांव तक पीडीएस का उनकी राशन है वो हम पहुँचा रहे हैं। तो इस तरीके से बहुत सारी योजनाएं जो हम पहले कनेक्टिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से या नक्सल के प्रभाव के होने से नहीं कर पा रहे थे वो अब हम लोग रीच आउट कर पा रहे हैं। आंगनबाड़ी जिसमें अंदर में बहुत सारे ऐसे गाँव है जो पॉपुलेशन का टारगेट अचीव नहीं कर पाते हैं, जैसे एक आंगनवाड़ी 300 का पॉपुलेशन हो तो बनती है, तो उनको हम लोग ढूंढ रहे हैं। नए बच्चे जो आंगनवाड़ी से अभी नहीं जुड़ पाए उनको हम आंगनवाड़ी में जोड़ रहे हैं। नारायणपुर ब्लॉक में अभी तक 22 ऐसे नए स्कूल हम लोग खोले हैं जो पहले नक्सल प्रभाव के कारण बंद थे, और कुछ ऐसे स्कूल है जो हम लोग पहली बार शासन जाने के वजह से प्रशासन के जाने के वजह से खुली है। तो 22 नए स्कूल खुले हैं। आंगनवाड़ियों में हम लोग ने बच्चों को नए

0: उपज और वन औषधियों के लिए भी विख्यात है। तेंदुपत्ता, हर्रा, बहेड़ा, चार, शहद और इनके अलावा और भी बहुत सारी चीजें जंगलों से मिलती हैं। इन्हीं वनों में मौजूद हैं तरह तरह की जड़ी बूटियां और ढेरों वनस्पतियों के अनमोल खजाने। बस्तर की जनजातियां इन पर पूरी तरह से निर्भर हैं। यही वजह है कि वे जल, जंगल और जमीन के महत्व को अच्छी तरह से समझते हैं और इनकी रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहते हैं।
1: मैं श्रीमती मेनका चंद्राकर ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट से डिप्टी कमिश्नर हूँ। अफेक्टेड है, नक्सली अफेक्टेड है, नक्सल प्रभावित हैं और बुनियादी सुविधाओं से, शासन की योजनाओं से जो की पहुंच से जो दूर हैं ऐसे गांवों को, और शासन का मुख्य उद्देश्य यही है कि इन गांवों को बुनियादी सुविधाओं, सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, ऐसी सुविधाओं से मतलब इनको लाभान्वित करना, और शासन की जितनी भी व्यक्तिमूलक योजना है उन सभी का सीधा लाभ इनको पहुंचाना, जैसे कि प्रत्येक का आधार कार्ड हो, प्रत्येक को उज्ज्वला योजना के तहत वो गैस कनेक्शन मिला हो, इस तरीके से व्यक्तिमूलक एवं समुदाय मूलक सभी योजनाओं से इनको सैचुरेट करना, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। प्रथम फेज में इसमें 5 जिलों को शामिल किया गया था, सुकमा, बीजापुर, नारायणपुर, दंतेवाड़ा और कांकेर। फरवरी 2024 के बाद जो बस्तर संभाग के ऐसे नक्सल प्रभावित जिले जहां पर की सुरक्षा जो शिविर है ना, कैंप जो लगाए जा रहे हैं, सुरक्षा कैंप, उसके 10 किलोमीटर की परिधि में ताकि एक सुरक्षित वातावरण में शिविर लगाया जाकर इनको सामुदायिक और व्यक्तिमूलक योजनाओं से, शासकीय योजनाओं से लाभान्वित किया जा सके, यहाँ पे जो रहवासी ट्राइबल पॉपुलेशन है उनको, इसलिए ये योजना चलाई गई थी। आदिवासी विकास विभाग द्वारा मुख्यतः जो है वो वन अधिकार पट्टा से संबंधित सैचुरेशन किया जाएगा, जो भी वहाँ पे ऐसे हितग्राही हैं जो कि 13 दिसंबर 2005 के पूर्व से जिनका कब्जा है उस क्षेत्र, मतलब आवास का कब्जा हो उनके पास या फिर कृषि भूमि का कब्जा हो, तो उनको नियमित तरीके से वनाधिकार पट्टा उनको शासन के द्वारा जारी किया जा सकेगा। और इसके साथ ही इसमें छात्रावास एवं ऐसे क्षेत्र जहाँ के बच्चों के लिए, मतलब जो स्कूली बच्चे हैं उनके लिए अगर छात्रावास की सुविधा नहीं है तो उनको छात्रावास की सुविधा उपलब्ध कराना, इसमें स्कॉलरशिप को भी जोड़ा गया है कि उन सभी बच्चों को FRA, मतलब बच्चों को जो है वो छात्रवृत्ति का लाभ भी दिया जाए। अभी तक काफी परिवर्तन देखने को मिल रहा है, जैसे कि मैं अपने ही अगर विभाग का बताऊं तो अभी तक जो 5 जिले थे, सुकमा, बीजापुर, नारायणपुर, दंतेवाड़ा और कांकेर, उसमें व्यक्तिगत वनाधिकार के कुल जो है 4988 जो वनाधिकार पट्टा वितरित किया गया है, सामुदायिक वन अधिकार का 214 पट्टा वितरित किया गया है और सामुदायिक वन संसाधन अधिकार के 78 पट्टे जो है वो वितरित किए गए हैं। इसके साथ ही छात्रावास भी, जहाँ पे छात्रावास की सुविधा तो थी मगर बच्चों की सीट संख्या जो स्वीकृत सीट छात्रावासों में कम थी, तो इसको शासन ने बहुत ही उसमें अपने प्रायोरिटी में लेते हुए वहाँ पे 650 सीटों की वृद्धि की है, मतलब सीटों का छात्रावास में स्वीकृत सीटों में वृद्धि करके जो बच्चे प्रवेश से वंचित रह जाते थे उनको भी प्रवेश दिलाने का कार्य किया है हमारे विभाग के द्वारा।

0: इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हैं छत्तीसगढ़ संवाद।
1: बस्तर में सार्वजनिक और निजी निवेश के साथ एक बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है। यहाँ सड़कों, पुलों और शिक्षा का विकास जिस तेजी के साथ हुआ है, उसी द्रुत गति से अस्पताल और फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स भी विकसित हो रहे हैं। स्थानीय लोगों को रोजगार देने के लिए एमएसएमई और अन्य उद्योगों को बढ़ावा दिया जा रहा है। आदिवासी क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए एकलव्य विद्यालय और आईटीआई स्थापित किए गए हैं।

बस्तर में केंद्र सरकार की योजनाओं के तहत 12,200 किलोमीटर से अधिक सड़कों का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है, जिससे आवागमन और सुरक्षा दोनों ही बेहतर हुए हैं। स्थानीय किसानों की आय बढ़ाने और उन्हें आधुनिक कृषि तकनीकों से जोड़ने के लिए विशेष प्रशिक्षण और सहायता योजनाएं आरंभ की गई हैं। महिलाओं और युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कौशल विकास और आजीविका मिशन के तहत अनेक कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। ऐसी कई योजनाएं हैं जो बस्तर के विकास को गति दे रही हैं। इस बारे में बता रहे हैं CEO दंतेवाड़ा श्री जय।

लोगों के घर में घर घर पानी, जल जीवन मिशन के अंतर्गत, स्वच्छ भारत के अंतर्गत जिनको टॉयलेट नहीं मिले उनको टॉयलेट मुहैया कराना, आयुष्मान कार्ड बनवाना, और ऐसे ही जो सामुदायिक आधारित जो हमारी संरचनाएं हैं, जैसे सभी उन गांवों में सैचुरेशन मोड पर सभी आंगनवाड़ियों को बनवाना, जितने भी उपस्वास्थ्य केंद्र या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं उनको उनका निर्माण करवाना, राशन कार्ड, प्राइमरी स्कूल, प्लेग्राउंड, सड़कें, बिजली, पानी, इंटरनेट, ये सबको पहुंचाने और सैचुरेशन करने

बासनपुर के अंदर भी अलग अलग विकास कार्य हुए हैं। सभी तरीके की योजनाओं और सभी तरीके के फंड्स जो हैं उसका उपयोग यहाँ पे किया गया है। जैसे डीएमएफ को यूज किया गया है, सरकार की जितनी भी योजनाएं चलती हैं चाहे वो प्रधानमंत्री आवास हो, जल जीवन मिशन हो, उसको उसका कन्वर्जेंस किया गया है। और SCA जो फंड होता है उसको भी यूज करते हुए जितनी भी लोगों की डिमांड, तो हमने इसमें जो डीएमएफ है उससे जैसे मुलेर का 2 करोड़ से ऊपर का हमने सैंक्शन दिया था इलेक्ट्रिफिकेशन।

0: बस्तर में पर्यटन और संस्कृति के संरक्षण की भी अपार संभावनाएं हैं। इसी के मद्देनजर यहाँ प्राकृतिक सुंदरता और जनजातीय संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन स्थलों का विकास और बस्तर ओलंपिक जैसे आयोजन हर साल किए जाते हैं। बस्तर के किसान, महिला समूह, युवा उद्यमी और आदिवासी समुदाय एक साथ मिलकर इसे संवार रहे हैं, इसे आत्मनिर्भर बना रहे हैं और समृद्ध कर रहे हैं। बस्तर में बुनियादी जरूरतों के विस्तार के लिए कई काम किए जा रहे हैं।
1: मैं कृपेन तिवारी, सहायक आयुक्त के पद पर जिला कोंडा गांव में कार्यरत हूं। जो बस्तर के वनांचल क्षेत्र है जो नक्सल से प्रभावित थे, बस्तर में 5 जिले थे जिसमें से कांकेर, नारायणपुर, बीजापुर, सुकमा और दंतेवाड़ा को शामिल।

छोर तक शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं की पहुंच सुगम सुनिश्चित करना था। सरकार ने इस पर अच्छा कार्य किया, फिर पूर्णता और सघनता से शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं की पहुंच को सुगम बनाने की ओर सरकार कार्य कर रही है। शासन में भी कोई विशेष विभाग एक विशेष विभाग नहीं, शासन की जन कल्याणकारी योजनाएं विभिन्न विभागों के माध्यम से लोगों तक पहुंचती है। जैसे राशन की पहुंच को सुनिश्चित करने के लिए खाद्य विभाग के सहयोग की आवश्यकता होती है। बच्चों को उनके पोषण को ध्यान देने और बुनियादी स्तर पर उनका विकास करने के लिए बाल विकास, महिला एवं बाल विकास विभाग की आवश्यकता होती है। शिक्षा के लिए, शिक्षा की पहुंच को सुगम बनाने के लिए शिक्षा विभाग की आवश्यकता होती है। जनजाति कार्य विभाग की आवश्यकता होती है। वैसे ही विभिन्न विभागों का सभी का साझा सहयोग से ही जनता तक अंतिम रूप से पहुंचा जा सकता है। 31 मार्च 2026 की स्थिति में छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त भी घोषित कर दिया गया है। तो अब ये शासन कहे कि उस क्षेत्र को हमने टारगेट लिया हुआ था, फोकस में रखा हुआ था, केंद्र बिंदु में रखा हुआ था, तो उस क्षेत्र की विकास करने के लिए ही ये 2.0 नियंत्रण लाहार का प्रारंभ किया गया है। और जैसे ही इसके सेचुरेशंस को ही इस वर्ष इसमें लक्ष्य रखा जाएगा और आगामी जैसे ही शासन की निर्णय आएगी वैसे ही इसमें प्रशासन करेगा। आंगनबाड़ी केंद्र भी इसमें शामिल है, पीडीएस भी शामिल है और रोड एक्टिविटीज भी इसमें शामिल है। ये जो भी आधारभूत और संरचनाओं से लेकर जो अपने सर्विसेज सेक्टर्स की जो चीजें होती है वो सारी चीजें इसमें शामिल है।

0: छत्तीसगढ़ सरकार बस्तर के विकास को लेकर कई मोर्चों पर एक साथ काम कर रही है। अब कृषि, कौशल विकास, पर्यटन और उद्योग जैसे क्षेत्रों में बस्तर की संभावनाओं को उजागर किया जा रहा है। प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय का मानना है कि विकसित छत्तीसगढ़ @2047 का संकल्प नवा अंजोर विजन के माध्यम से पूरी तीव्रता और पारदर्शिता के साथ आगे बढ़ रहा है।
1: जब छत्तीसगढ़ स्वस्थ रहेगा तभी हमारा छत्तीसगढ़ आगे बढ़ेगा। इसके लिए आज से इस

बस्तर क्षेत्र में मुख्यमंत्री स्वस्थ बस्तर अभियान इसकी शुरुआत किए हैं। अब आने वाले समय में हमारे स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी कर्मचारी एक एक घर में जाके एक एक लोगों का स्क्रीनिंग करेंगे और उनकी बीमारी का इलाज होगा। और आने वाले समय में नियत निलाना 2.0 वो भी शुरू करने वाले हैं। प्रत्येक ग्राम पंचायत में शिविर होगा और शिविर में सारे अधिकारी रहेंगे सभी विभाग के, और जो भी योजनाओं से संबंधित राशन कार्ड बनना है, आयुष्मान कार्ड बनना है, वन भूमि का पट्टा की बात है, सब सारा समस्याओं को निपटाते जाएंगे। भी हम लोग अभियान बहुत जल्दी बस्तर क्षेत्र में शुरू करने वाले हैं।

बस्तर संभावनाओं की धरती है। यही कारण है कि ऐसा कोई क्षेत्र नहीं जिसमें एक मजबूत स्तंभ न खड़ा किया जा सके। यहाँ की मिट्टी की सौंधी सौंधी गंध में बेहद ही अपनापन है। बस्तर सदियों से सबको लुभाता है और बड़ी ही आत्मीयता के साथ यहाँ आने को आमंत्रित भी करता है। छत्तीसगढ़ के विशाल कैनवास पर अब बस्तर की खुशहाली के कई रंग खिल उठे हैं। यहाँ के मांदर की थाप और बांसुरी की तान से विकास के सुर निकल रहे हैं। यही वजह है कि पूरे जोशो खरोश के साथ बस्तर बढ़ रहा है उजाले की ओर।

0: इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे छत्तीसगढ़ संवाद।
1: उजाले की ओर, अभी आप ये प्रायोजित कार्यक्रम सुन रहे थे। इसे हम आकाशवाणी रायपुर से रिले कर रहे थे। मीडियम वेव 396.8 मीटर यानी 756 किलोहर्ट्ज, एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है।
2: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सहकर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
3: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
1: ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। सुबह के 10:30 हुए हैं। लोक गीतों का कार्यक्रम गुरदुम शुरू करने से पहले सुनते हैं ये संदेश।
4: किसान भाई बहन मन का जे नुआ उवाड एदाए रोज शनिवार के सांझ बेरा 7:30 ले 8 तक सुना फोन इन किसान वाणी। यथा कृषि महकमा चो विशेषज्ञ बल्लो ने खोजाकारी दादा दीदी दे दे आपन मन चो खेती कमाने ले जुड़ लो सपाए समस्या चो समाधान। बीज ले धरून हाट बाजार तक हर सवाल चो जवाब सीधा आपन मन के मिरे दे। और हाँ, ये कार्यक्रम जो रिकॉर्डिंग होए से रोजे मंगलवार अड़ौ पहार 3:30 ले 4 तक तो आपन मन सपाए सुना और आप लोग सवाल सीधा आम के फोन निसांगा।

0: आमचो फोन नंबर आय 07782222666। फोन इन किसानवाणी, आपन मंचो सवाल, आपन मंचो कहानी, खेती बाड़ी चो जुबानी, आकाशवाणी जगदलपुर ने।
1: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
2: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
1: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
2: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
1: बुकिंग हेतु संपर्क करें 870-001-4242 पर।
2: 870-001-4242।
3: अब प्रस्तुत है लोक गीतों का कार्यक्रम गुर्दू। आज इसमें सुनिए नाट गीत। गायक कलाकार है हीरा सिंह कश्यप और

लोकवाद्य धुनों के कार्यक्रम पाड़ में अभी आपने सुना किशन और साथियों का बजाया बारात पाड़। ये आकाशवाणी जगदलपुर है। 11:55 होने को हैं। प्रादेशिक समाचार अब हम आकाशवाणी रायपुर से रिले

और अब पेश आज के मुख्य समाचार। राष्ट्रपति आज शाम राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में 65 पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगे। इनमें छत्तीसगढ़ की बुधरी ताती भी शामिल है। महासमुंद जिले के सरायपाली क्षेत्र में वैज्ञानिक अन्वेषण के दौरान मिले हीरे, मुख्यमंत्री ने इसे महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। और मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में नवा रायपुर स्थित मंत्रालय में हो रही है राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस दौरान 2 पद्म विभूषण, 7 पद्म भूषण और 56 पद्मश्री सहित कुल 65 पद्म अलंकरण दिए जाएंगे। इनमें छत्तीसगढ़ की बुधरी ताती भी शामिल है। इसके अलावा सुविख्यात टेनिस खिलाड़ी विजय अमृतराज, अभिनेता ममूटी, पार्श्व गायिका अलका याग्निक और क्रिकेट खिलाड़ी रोहित शर्मा को भी पद्म पुरस्कार दिए जाएंगे। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर सरकार ने वर्ष 2026 के लिए 5 पद्म विभूषण सहित 131 पद्म अलंकरणों की घोषणा की थी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में नवा रायपुर अटल नगर स्थित मंत्रालय में राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक शुरू हो गई है। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाएंगे। महासमुंद जिले के सरायपाली क्षेत्र के बलौदा बेलमुंडी डायमंड ब्लॉक में वैज्ञानिक अन्वेषण के दौरान हीरे मिलने से छत्तीसगढ़ के खनिज क्षेत्र में नई संभावनाएं बनी है। एनएमडीसी सीएमडीसी लिमिटेड द्वारा 200 टन खनिज सामग्री के परीक्षण के बाद कुल 5 हीरे मिले हैं, जिनका वजन 1.22 कैरेट है। इनमें 2 जेम क्वालिटी के हीरे शामिल हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इसे प्रदेश के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि बताते हुए कहा कि इससे निवेश, रोजगार और आर्थिक विकास के नए अवसर बढ़ेंगे। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस के अवसर पर आज राजधानी रायपुर में खेल और पर्यावरण संरक्षण को जोड़ते हुए वृक्षारोपण अभियान आयोजित किया जाएगा। नया रायपुर के ग्राम पलौद में छत्तीसगढ़ के ओलंपिक संघ और वन विभाग के संयुक्त तत्वावधान में एक कार्यक्रम होगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मुख्य अतिथि के रूप में इसमें शामिल होंगे। इस दौरान 2026 पौधों के रोपण का लक्ष्य रखा गया है। छत्तीसगढ़ सरकार ने जिला सहकारी केंद्रीय बैंक अंबिकापुर की कुछ समितियों में वित्तीय अनियमितताओं के मामले में कड़ी कार्रवाई की है। इसके बाद शंकरगढ़, कुसमी, रामानुजगंज और रामचंद्रपुर क्षेत्र के प्रभावित किसानों को फिर से खाद और बीज मिलना शुरू हो गया है। मामले में दोषी अधिकारियों कर्मचारियों पर FIR, निलंबन और विभागीय कार्रवाई की गई है। करीब 497 किसानों की शिकायतों में 30 करोड़ 51 लाख रुपए से अधिक की अनियमितता सामने आई है। कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने कहा कि किसानों के हितों से खिलवाड़ करने वालों पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव आज संभागीय और जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक लेंगे। बैठक में अधिकारियों की उपस्थिति अनिवार्य होगी, किसी भी प्रतिनिधि को मान्यता नहीं दी जाएगी। बैठक में प्रदेश के स्कूलों में व्यवस्थाओं और शैक्षणिक तैयारियों की समीक्षा की जाएगी। सक्ती जिले के डबरा थाना क्षेत्र में छूही पाली गांव के पास लोगों को लेकर जा रहा मालवाहक वाहन पलट गया। हादसे में 11 से 12 लोग घायल हुए हैं। 4 गंभीर घायलों को बेहतर इलाज के लिए रायगढ़ रेफर किया गया है। पुलिस के अनुसार वाहन में 15 से 20 लोग सवार थे, जो शादी समारोह से लौट रहे थे। छत्तीसगढ़ में दक्षिण पश्चिम मानसून ने

दे दी है। मौसम विज्ञानी डॉक्टर गायत्री वाणी ने बताया कि सोमवार 22 जून को मानसून ने बस्तर संभाग के दंतेवाड़ा जिले के रास्ते प्रदेश में प्रवेश किया है और आज की स्थिति में मानसून मध्य छत्तीसगढ़ तक पहुंच गया है। वहीं आगामी 2 से 3 दिन में मानसून के और आगे बढ़ने की संभावना है। इसी के प्रभाव से पिछले 24 घंटे में प्रदेश के अधिकांश स्थानों में मेघ गर्जन के साथ मध्यम से लेकर तेज वर्षा और वज्रपात भी हुआ है। वज्रपात की स्थिति प्रदेश में आगामी 5 दिन तक बने रहने की संभावना है। इसके साथ ही मध्य और उत्तर छत्तीसगढ़ में अधिकतम तापमान में अगले 24 घंटों के दौरान 1 से लेकर 3 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट होने की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति आज शाम राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में 65 पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगे। इनमें छत्तीसगढ़ की बुधरी ताती भी शामिल है। महासमुंद जिले के सरायपाली क्षेत्र में वैज्ञानिक अन्वेषण के दौरान हीरे मिले, मुख्यमंत्री ने इसे महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया है। और मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में नवा रायपुर स्थित मंत्रालय में हो रही है राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन छत्तीसगढ़ में होगा, जिससे शाम 6:10 पर

मीडियम वेव और एफएम बैंड पर हम आकाशवाणी के जगदलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 12 बजे हैं। अब प्रस्तुत है हल्बी बोली में कार्यक्रम कला और कलाकार।

कला और कलाकार कार्यक्रम सुन तो सपाए कलाकार भाई बहन दादा दीदी और सियान सजन मन के मैं गोंची करे से जुहार। तो कलाकार भाई बहन मन दका जी फिर मैं तुमको भेट घाट हो के लेने अले सपा जी बल नगद नगद आसास का है दका सपाए नगद नगद रहा दका कलाकार भाई बहन मन कसम बल्ली के दका तुम्हें नगद रहा जाले तो मैं बल नगद रहने ने और जिस दिन तुमके भेंट हो के दे अब भेंट हो के ले जाल तुम चुका जाए नगद नगद गोट गीत गोविंद और कई कई गोट मन धरू ने देने तो गोट बल्ले मैं के सुतैली कलाकार भाई बहन मन आजी बल मैं तुम चुका ने गोट गोट धरू नहीं ले से अरे गोट है कलाकार और अनुशासन। हाँ तो कलाकार भाई बहन तुम्हें जाने साथ अनुशासन बोले काय के बोलो हमने कि अनुशासन बोले उन जो सपाए काम के समयाने करूने और समयाने सोतो समयाने उठतो समयाने खातोर ये सपा अनुशासन है उन चीज संग संगे काहे कि नहीं कलाकार भाई बहन में हमी बड़े लोग के का तो जुआर बर बोलू से ने उन मन चो मान सम्मान बट करू से उन बोले युवा ये सपाए ने और काहे कि नहीं जसन हम चो घर ने सियान सजन मन कर दे ने बड़े लोग मन जसन कर दे उसने हम चो पीला मन बोले सीखू तो ये अनुशासन जो बोलू से ये तो हम चो घर ले धरुम बारी पीला बेरा धरुम बारी बड़े लोग तक मन सपाए लोग करू आत ने और नान नानी पीला मन के सीखा तो काजे नगद नगद गोट सांग तो काजे सीखा तो काजे उनका है कि नहीं आम के बोले उन्हीं मन चो फूरे उन नगद नगद गोट में गोटिया पड़वा और मन चो आसन करू बोले पड़वा ने तो कलाकार भाई बहन मन दका मैं अब तुमके बोले की कलाकार और आत्मा अनुशासन ने कलाकार बोले तुम बोल जाने साथ की आमचो बस्ते ने कितना नगत नगत कलाकार भाई बहन मन आसत ने जो मन चलो कितना नगत नगत होना रासे मात्र काहे की कलाकार भाई बहन मन मैं दुखवाए की जो आमचो गांव पारा जो कलाकार भाई बहन मन आसत ने उन मन काहे की नहीं उन मन चलो कई हुनर आसे जहन के बड़े ही होलो सोनार होलो लोहार होलो ने नाले उन्हें मिस्त्री काम करवा लाइट काम करवा सिलाई काम करवा ये मन सब पाए का कलाकार मना कहन के मन चलो हुनर आसे खूबे अब मैं दुखवाए की मन चलो कई काम होता है दिने कतो का जहन के दका सिलाई के ची दका ने कोनी सिलाई सीखे सो नाम चो भाई बहन मन तुन मन ताने सिलाई कपड़ा है इसने उन मन सिलाई कपड़ा आन लोग बोलो आज की नई आम

0: के साथ चेटिनाड सीमेंट द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
1: किसान भाई बहन मन का जे नुआ उवाड एदाए रोज शनिवार के सांझ बेरा 7:30 बजे ले 8 बजे तक सुना फोन इन किसान वाणी यथा कृषि महकमा चो विशेषज्ञ बल्लो ने खोजाकारी दादा दीदी दे दे आपन मन चो खेती कमाने लिए जुड़लो सपाई समस्या चो समाधान बीज ले धरून हाट बाजार तक हर सवाल चो जवाब सीधा आपन मन के मिरे दे। और हाँ, ये कार्यक्रम चो रिकॉर्डिंग होय से रोजे मंगलवार अड़ौ पहार 3:30 बजे ले 4 बजे तक। तो आपन मन सपाय सुना और आप लोग सवाल सीधा आम के फोन ने सांगा। आमचो फोन नंबर आए 07782226666। फोन इन किसान वाणी आपन मंचो सवाल आपन मंचो कहानी खेती बाड़ी चो जुबानी आकाशवाणी जगदलपुर ने।
2: हाँ, तो कलाकार भाई बहन मन तुम के मैं अनुशासन गोट सांगते रहने तक अनुशासन ने सफाई काम कर ले काय कि नहीं खूबे बलाओ बर फायदा हुआ जन के दखा तुम के तुम जो जिम्मेदारी के जाना से ने कि कमाले जाले घर जो जिम्मेदारी आ से बोलून ए चीज संग संग काय कि कलाकार भाई बहन मन आराम जो जोन परंपरा से रीति रिवाज आ से जोन कला से उन सफाई बोले बाचे देने कसम बोले के दखा तुम दके साथ की ने जितलो हम के सुख सुविधा मिले सुटली हम जो जोन कला से ने उन कला मन सफाई हाजते जाए से जहन की मैं बले से तुमके ढेकी चिदका ने ढेकी होली मुसर होली ने आगे लोग का है कि ढेकी मुसर उन मन के रोज जे बियान उठन बारी धान कुटतो नाले पे उन मंडिया रूज तो का जे जता ये सब पाए मन रत रहे ने मान तर का है कि ये बेसा पाए आज ते जाए से कसन बोले कि हम उन सब पाए के भुलकते जाऊं से जितलो सुविधा होए से हम आप लोग कला के हम जो जोन पुरखा बेराले जोन एते चलते ये उन सब पाए के हम भुलकते जाऊं से ये सब पाए नी हो बोलून का है कि कला का भाई बहन तुम के बोले आप लोग जोन हुनर आ से ने तुम चलो गे जोन तुम जो पुरखा ले जोन चलाते है सो तो तुम जो घर के जोन कला मिली से ने जहन के बाजा मोरी बजा तो बोले होली ने ये बोल गोटो कला है बाजा मोरी काय के नहीं काय के बाजा मोरे बजाट लोग बल निदा का देत ने कसम बोली के हमें बिया दान होली काई होली जाले नहीं उता हमें नहीं बैंड बाजा के हक दे उसे तो बाजा मोरी तो हाज लिखा है तो काय के नहीं कला का भाई बहन मन मैं यही बोले दे तुमके कि जो बाजा मोरी तुमके बे बोले से उन हाजते जाए से जो नाम चो घर चो सियान सजन मन सीखला सोत उन कला के जान आप लोग जो पीला सोत ने उन पीला मन के सीखा कहन कुन पीला मन सीखला जाले तुम चो जो न परंपरा से उन बोले चले दे आ जो रीति रिवाज आ से उन बोले बनो रह दे। हाँ, तो कलाकार भाई बहन मन दखा सपाय नंगर गोट मन तो होली ने तुम्हें जानू आज के महिला जलाओ बल गोट मन धोरी नु आए आज बोले गोट धोनी ले से जो ना आजी चो कलाकार और आजी चो कलाकार में तुम का जे गोटे आके धोनी ले से पंडित शांति देव घोष जो न खुबे नंगत नर्तक और अभिनेता बले आता शिक्षक बर रोत और ये चीज संग संग का गोटो लेखक बर रोत ये मन चो गोट में तुम संग तो गोटे आंची मां तुम चो पहली गोटो गीत सुनो था।

अभिनयचो पढाई करलो पाचे काय नित्यचो शिक्षाबद्ध धरला और भारतीय नृत्य के और विकास करतो काज काय करला ये मन नाही. रवींद्रनाथ टैगोर साहब जो मार्गदर्शन ने भारत चो सपाय जगह मन ने जाऊन भाती रे कथकली मणिपुरी और उत्तर भारतीय नृत्य चो पढ़ाई करला और उन चुने अभ्यास वाले करूप मुरियाला और 1930 ने विश्व भारती ने गोटो के शिक्षक पद चो काम करला और फिर संगीत भवन चो प्रोफेसर वाले बनला. अरे चीज संग संग का है कि मैं तुमको मुर बोला.

नाटक संस्था बारले दिला हा मानक डी लिस्ट बले मिलली और ये संग संग का डाक टिकट जो बस सम्मानित मिली 2002 ने भारत सरकार चो डाक विभाग बांटले एमन चो सम्मान काजे स्मारक डाक टिकट एमन चो नाम ने बनाला और 1 दिसंबर 1999 ने एमन नाम के छानुन बारी गेला तो कलाकार भाई बहन मन दाका और तुम के पंडित शांति देव घोष साहब चो पूरा जीवनी सांग लेने की एमन कसने मन चो बाबा काय काम करते रहत ने एमन कोन महान सम्मानित व्यक्ति संगे मन रहला ए मंच बाबा और समाज का जे कितलो समाज सुधार और सेवा बल दिला ने और ये मंच दखुन दखुन का कि मन बले आप लो समाज सेवा काम करला ने और इतलो शिक्षा मन धरला दका कलाकार भाई भाई मन असने तुम बली मंचो असन आप लो जोन बले पढ़ाई लिखाई आसे मजा रे निछांडा जितलो बले तुम चलो हुनर आसो नंगत नंगत बनाट के आजे मेहनत मसागत करा दका तो कलाकार भाई भाई मन दका ऐसा पाए गोट मन तो होली नहीं दे मैं आओ बोले गीत धरू नीले साले गीत के सुनूता

तो कलाकार भाई बहन मन ये गीत के सुनलास ने एक गीत के गालास और आश्री देवारुन मन चो संगवाली मन दका केटला नगद गीत रली ने तो कलाकार भाई बहन मन दका मचलो खिन कन समय बले आसे त मैं बोलते रे और बोल गोटो गीत गोबिन होले नगत लागती ने हाले गीत के बले धुन ले से गीत के बले

तो कलाकार भाई बहन मन ए गीत के सुन लासने ए गीत के गाल हसे शिवराम नागरुन मन जो संगवारी मन तो कदा दका मचो जातो समय बल होई होली ने ए गीत संग संगे हाले फिर मके विदा दिया था। कला और कलाकार कार्यक्रम सुनतो सपाय मचो माय माता दादा दीदी और सियान सजन मन के मैं गुंची जातो पूरे करे से जुहार।

हल्बी बोली में अभी आपने सुना कार्यक्रम कला और कलाकार, आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। दिन के 12:30 हुए हैं, लीजिए सुनिए ग्रामीण महिलाओं का कार्यक्रम

घद्वा कार्यक्रम सुनतो सपाय माय माता दीदी भैमन के मैं गोंची करे से जुहार। हाँ तो दीदी भैमन धाका भेटघाट तुम के हो की लेने कसन बली के मचो समय तो यही है कि मैं तुम संग भेटघाट हो खेदने है। तो दीदी भैमन भेटघाट तो हो लेने आले मके गोटो गोट सांगा तो दीदी भैमन तुम बियान उठून काय काय बुता करवास ने आले मैच बस सांगून देन पेने। तो दीदी भैमन बिहान उठून बारी दका जसनी आम राती बेरा सो आमने राती बेरा सोमवार फुटनाय घर चो काम बुता करून बारी जोन लगे कोनी सामान बाटू माट पकाला से सपाय के सकलून बारी ने सुआम और जसनी सुआम बियाने उठन मा जसनी कुकड़ा भासे दे उसनी उठून बारी आगे तो ये सोचुआम की हाँ उठून बारी पानी इली के नहीं हिली राती बेरा लाइट जाओ रहे कि रली बियाने लाइट गेली जे आले कसन होय दे टीवी कसन दोकवा मोबाइल कसन चार्ज करवा ई सब पै सोचवा हमने दका आम के दका दीदी भर मन आमी नहीं दका अबे मोबाइल टीवी बोले नहीं आम के तो लत लागे से ने कसन बोले के दका दे सब पैच घर मन ने दका टीवी आसे मोबाइल आसे ने अरे ची संग संगे काय की नहीं जोन घर ने आम चो सियान सजना आसा वो मन बोले मोबाइल चला सो दका मानतर मोबाइल चला कार्य तो उनके

0: 18% आता इधन मतलब इद की इंजे गाड़ी पोटरू गाड़ी असित के सस्ता दौर किंदा
1: क्या बात है उमेश आजकल खूब छाए हो अखबार में नई नई रिपोर्ट।

0: जानकारी होना प्रत्येक नहीं है, आत्मविश्वास, अभ्यास और समय प्रबंध भी उतने ही महत्वपूर्ण है।
1: हाँ उदित, सही कहा तुमने। मेरी असफलता ने मुझे सिखाया है कि केवल मेहनत करना काफी नहीं होता, बल्कि सही दिशा में मेहनत करना भी जरूरी होता है।
0: बिल्कुल चेतना, कई बार लोग असफल होने के बाद प्रयास करना छोड़ देते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि असफलता को एक अवसर के रूप में देखना चाहिए।
1: हाँ बिल्कुल, क्योंकि यदि हम अपनी गलतियों को जान पाए तो अगली बार मेहनत भी अच्छा कर सकते हैं, है ना।
0: हाँ, और यही असफलता का सबसे

0: दोस्तों अगली फरमाइश करता। फरमाइश आई है नवागढ़ कटाई से, नारायण प्रसाद वर्मा, चंद्रकांत वर्मा, सीमा, श्रद्धा, दामिनी वर्मा।
1: और साथ ही श्रीरामपुर भोकर से हरिभाऊ बिड़वे, पूजा, अनिकेत, अनीता, श्रावण, बंडू पोपटघट। साथ ही गांव मोहल्ला पन्ना मध्य प्रदेश से कौशल किशोर, संगीता, हर्षित एवं वैभव मट्टू। साथ ही अस्पताल रोड केंद्रीय विश्वविद्यालय सागर मध्य प्रदेश से चंद्रेश गौहर, श्रीमती वंदना गौहर, मयंक एवं तन्वी गौहर। आइए सुनिए ये प्यारा सा गीत।

0: दोस्तों, अभी आपने सुना यह गीत उदित साधना की आवाज में। गीतकार थे मजरूह और संगीतकार थे जतिन ललित।
1: दिन खत्म होने को है, कुछ काम अधूरे हैं। इस भागे से जिंदगी में हमारे आराम अधूरे हैं। मेहनत है पूरी सबकी, अंजाम अधूरे हैं। मेहनत है पूरी सब...

0: कि अंजाम अधूरे हैं, दिन भर सपने पूरे करने वाले हर शाम अधूरे हैं, हर शाम अधूरे हैं।
1: दोस्तों, दिलचस्प बातों और प्यारे गीतों का सफर पर

0: मिलेंगे
1: नई कहानी,
0: नए नगमे
1: और ढेर सारी खुशियों के साथ।
0: तब तक के लिए हमें दीजिए अनुमति, मुझे यानी चेतना यादव को
1: और मुझे उदित नाग।
0: शुभ संध्या, नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे युवा श्रोताओं का अपना पसंदीदा ये कार्यक्रम। ये कार्यक्रम आपकी सेवा में आकाशवाणी के जगदलपुर केंद्र से प्रसारित किया गया। मीडियम वेव 396.8 मीटर अर्थात 756 किलोहर्ट्ज़, एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। इस समय शाम के 6 बजने को है समाचार। अब हम आकाशवाणी

0: 12 भारतीय नागरिकों की मौत हो गई।
1: रास लफान परियोजना में जो वहां एक विस्फोट हुआ, उस विस्फोट में 12 भारतीय नागरिक मारे गए हैं। इसके अलावा कुल 66 लोग ऐसे हैं जो घायल हुए हैं, वो लोग सब लोग सुरक्षित हैं और हॉस्पिटल में उनकी मेडिकल ट्रीटमेंट हो रही है। ये 12 लोग के बारे में हम लोग कतर में वहां के सरकार के साथ और इनके परिवारजनों के साथ उनसे बातचीत हो रही है हमारी।
0: इस बीच तमिलनाडु सरकार ने कतर में आग की घटना से प्रभावित लोगों की सहायता के लिए हेल्पलाइन शुरू की है। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने प्रत्येक मृतक के परिवार को 10 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार पीड़ितों के पार्थिव शरीर को वापस लाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज मंगोलिया के विदेश मंत्री बिसेत सिंह मटमुंग और उद्योग तथा खनन मंत्री गोंगोर दमदनियाव के साथ मंगोल तेल शोधन परियोजना के निर्माण स्थल का दौरा किया। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ. जयशंकर ने कहा कि भारत और मंगोलिया की मैत्री परियोजना में निरंतर प्रगति हो रही है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह

0: चौहान ने आज कहा कि सरकार अल नीनो के कारण मॉनसून के संभावित दुष्प्रभाव से निपटने में किसानों की मदद के लिए अग्रिम तैयारियां कर रही है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री चौहान ने ये बात कही।
1: अल नीनो के कारण कमजोर मानसून रहने की जो संभावित स्थितियां हैं और जिसका प्रभाव अब दिखने भी लगा है, क्योंकि मानसून अभी काफी लेट चल रहा है, इसलिए ओवरऑल अभी तक 43% बरसात कम हुई है और आगे भी जो मौसम का अनुमान है कमजोर रहने की संभावना है। और इसका मतलब ये है कि हमारी खरीफ की फसल उस पर इसका असर पड़ सकता है, और इसलिए बिना किसी देरी के हम काफी दिनों से इन परिस्थितियों से निपटने के लिए तैयारियां कर रहे थे। 315 जिले ऐसे होंगे जहां वर्षा कम रहने की संभावना।
0: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा सीयूईटी 2026 के परिणाम आज घोषित कर दिए। उम्मीदवार सीयूईटी के आधिकारिक पोर्टल पर अपना स्कोर कार्ड देख सकते हैं। एजेंसी के अनुसार इस वर्ष प्रवेश परीक्षा में 11 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी शामिल हुए। एफआईएच हॉकी प्रो लीग में आज भारतीय टीम का सामना पाकिस्तान से होगा। ये मुकाबला लंदन में भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे से खेला जाएगा। फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात 10:30 बजे ग्रुप के में पुर्तगाल का सामना अमेरिका और उज्बेकिस्तान से होगा। ग्रुप एल में रात 1:30 बजे इंग्लैंड का सामना घाना से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 396.8 मीटर अर्थात 756 किलोहर्ट्ज और एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। इसे आप न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी सुन सकते हैं। इस समय शाम के 6:05

मीडियम वेव 396.8 मीटर अर्थात 756 किलोहर्ट्ज और एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज, साथ ही न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। इस समय शाम के 6:10 होने को है। कुछ ही पलों में छत्तीसगढ़ी समाचार हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिले करेंगे।

छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन के संग संध्या तिवारी के जय जोहार। अब सुनो आज के प्रमुख समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में राखे गए दूसर नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार दिन एमा छत्तीसगढ़ के बुधरी तातीला मिले पद्मश्री सम्मान। राज्य मंत्री परिषद के बैठका में आज वीबी जी रामजी योजना और छत्तीसगढ़ कंप्रेस्ड बायोगैस नीति ला देगी मंजूरी। उन्हें अटल आजीविका समृद्धि हाट योजना शुरू करे के लेगी फैसला। और प्रदेश के 11,600 ले ज्यादा ग्राम पंचायत मन में काली ग्राम सभा के आयोजन करे जाही। अब समाचार विस्तार ले। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में राखे गए दूसर नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार दिन ये दौरान ओमन 2 पद्म विभूषण 7 पद्म भूषण और 56 पद्मश्री समेत कुल 65 पद्म अलंकरण दिन एमा छत्तीसगढ़ के बुधरी ताती घलो शामिल है जौन मन ला पद्मश्री ले सम्मानित करेगी। गणतंत्र दिवस के पूर्व संध्या में केंद्र सरकार है बछर 2026 पर 5 पद्म विभूषण समेत 131 पद्म अलंकरण की घोषणा करे रही। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के पगरेती में आज मंत्रालय में राखे गए राज्य मंत्री परिषद के बैठका में कतकुन फैसला लेगी। बैठका के बाद पत्रकार मन ले गोट बात करत उप मुख्यमंत्री अरुण साव बताइन है कि मंत्री परिषद है विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण योजना छत्तीसगढ़ के प्रारूप के अनुमोदन करे है। ये योजना के तहत पात्र ग्रामीण परिवार के सदस्य मन ला हर एक वित्तीय बछर में 125 दिन के रोजगार के गारंटी दे जाही। एकर तहत जल संरक्षण प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन ग्रामीण आधारभूत संरचना निर्माण आजीविका मूलक परिसंपत्ति के विकास और ग्रामीण क्षेत्र मन में रोजगार के मौका दे जाही। ये योजना के तहत चालू वित्तीय बछर बजट में 4,000 करोड़ रुपए के प्रावधान करे गए है। उन्हें मंत्री परिषद है अटल आजीविका समृद्धि हाट योजना शुरू करे के घलो फैसला ले है। ये योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्र में हथकरघा बुनाई सिलाई हस्तशिल्प केंद्र के संगे संग दलहन तिलहन प्रसंस्करण इकाई राइस मिल डेयरी के संग सेवा केंद्र के स्थापना करे जाही। एकर तहत कोल्ड स्टोरेज सोलर ड्रायर कृषि सामान मरम्मत अटल डिजिटल केंद्र विपणन केंद्र और आपूर्ति केंद्र घरों ग्रामीण क्षेत्र मन में स्थापित करे जाही। ये योजना के उद्देश्य स्थानीय उत्पादन प्रसंस्करण सेवा और विपणन गतिविधि ला बढ़ावा देना है। एकर ले गांव वाले मन ला अपन क्षेत्र में रोजगार और स्वरोजगार के नवा मौका मिलही। उन्हें एक आने फैसला में मंत्री परिषद है छत्तीसगढ़ कंप्रेस्ड बायोगैस नीति के प्रारूप के अनुमोदन करे है। ये नीति के माध्यम ले राज्य में उपलब्ध कृषि अवशेष नगरीय ठोस अपशिष्ट पशुधन अपशिष्ट और आने जैविक संसाधन के वैज्ञानिक प्रबंधन करके ओमला कंप्रेस्ड बायोगैस ईंधन में बदले जाए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में नैफेड के नीलामी पोर्टल के शुभारंभ करे। ये मौका में श्री शाह किसान मन के सीधा भागीदारी मन ला मजबूत करे पर खरीदी काम में बिचौलिया मन की भूमिका समाप्त करे के

नेफेड की प्रगति के जिक्र करत श्री शाह कहिने की 12 बछर पहली गंभीर वित्तीय कठिनाई के सामना करत ये संगठन है आज 74 लाख किसान मन के सेवा करैया एक मजबूत संस्थान बन के उभरे है। ये मौका मा कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान घलो मौजूद रही। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज नई दिल्ली में अल नीनो के मौसम में पड़ैया प्रभाव और कृषि ऊपर एक असर के समीक्षा पर एक ठीक बैठक करी। बैठक के बाद श्री चौहान मीडिया ले गोट बात करत बताइने कि अल नीनो के सेती देश भर में कमजोर मानसून की स्थिति बने हैं, जिकर सेती करीबन 315 जिला ऐसा है